ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और 28 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सुप्रभात आगरा।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई

0: जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम वंदना। भारत माता सबकी माता, चाहे जो हो धर्म विशेष, माँ की रक्षा माँ की पूजा, हम सबका है कर्म विशेष।

जपले रे मन नाम राम का, राम नाम सुखदाता है। राम नाम में रमने वाला भव सागर तर जाता है।

दुख भंजन है नाम तुम्हारा पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन कार्य तुम्हारा कृपा करो हनुमान।

हम सभी के प्रभु इतने सुंदर हैं कि हमें उनसे प्रेम हो ही जाता है, और प्रभु ने इस प्रीत की डोरी को ऐसे बांधा हुआ है कि ये प्यार ना तो तोड़ने से टूटता है और ना ही छोड़ने से छूटता है। हे प्रभु, तू दिन रात मेरे मन में निवास करता है, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रख।

0: इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने लता मंगेशकर, हरिओम शरण, अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में भक्ति गीत सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार।
1: ये भारतवर्ष जो कि हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, बड़ा पवित्र देश है। धर्म सुख देने वाला ये देश सब देशों से उत्तम है। कहते हैं देवता लोग ये गीत गाते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि में होता है, जिसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों पा जाता है। ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। जो लोग सुजन्मा हैं, जिनके जीवन बहुत अच्छे हुए हैं, उन राम कृष्ण बुद्ध आदि महापुरुषों के, महात्माओं के, आचार्यों के, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के, गुरुओं के, धर्मवीरों के, शूरवीरों के, दानवीरों के, स्वतंत्रता प्रेमी देशभक्तों के उज्जवल कामों की ये कर्म भूमि है। इस देश से हमको परम भक्ति करनी चाहिए। धर्म के अनुसार चलने वालों को कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिए। देश की उन्नति के कामों में देशभक्त, पारसी, मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख और यहूदियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। सब भाइयों को मिलकर अनाथों, विधवाओं, धार्मिक स्थानों और गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों को निडरता, सच्चाई, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमा का सदा अमृत के समान सेवन करना चाहिए। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, सिख, जैन और बौद्ध आदि सब हिंदुओं को चाहिए कि वे अपने अपने विशेष धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर बरतें, अपने विश्वास में दृढ़ता, दूसरों की निंदा का त्याग, मतभेद में सहनशीलता और समस्त प्राणी मात्र से मित्रता रखनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जिसको वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उसके साथ करे, उस काम को वो भी किसी दूसरे के प्रति ना करे, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसके साथ कोई ऐसी बात करता है जो उसको प्रिय नहीं है तो उसको कैसी पीड़ा पहुंचती है। मनुष्य को चाहिए कि ना किसी से डरे और ना किसी को डर पहुंचावे। भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश नहीं है, ये तो मुस्लिम, ईसाई, पारसियों का भी देश है। ये देश तभी सम उन्नत और शक्तिशाली हो सकता है जब भारतवर्ष के विभिन्न जातियां और यहाँ के विभिन्न संप्रदाय पारस्परिक सद्भावना और एकात्मकता के साथ रहें। प्रत्येक व्यक्ति को

0: अपने धर्म में दृढ़ आस्था होनी चाहिए, किंतु दूसरे धर्मों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने धर्म में बड़ी आस्था है, किंतु जब मैं गिरजाघर या मस्जिद के सामने से गुजरता हूँ तो मेरा सिर स्वयं श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि मंदिरों की तरह ये भी भगवान भक्ति के पुण्य स्थान हैं।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार। इसी के साथ कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी इस सभा में और अन्य सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं रेडियो पत्रिका युवा भारती और रात्रि 10 प्रसारित किया जाएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनना मत भूलिएगा श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर पीके शर्मा की वार्ता। विषय रहेगा अनाज भंडारण कैसे करें। कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 6:45। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित की जाएगी डॉक्टर हरेंद्र सिंह तोमर की वार्ता अल्जाइमर रोग।

दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास आप सुन सकते हैं प्रातः 7:31 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि हम आपको सुनवाएंगे 8:45 पर और 9:25 पर आप सुन सकते हैं पुरानी फिल्मों से गीत गीत मंजूषा में। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता का समय रहेगा प्रातः 10:00।

पूर्वाह्न 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आज के कलाकार का। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अभिनेता परेश रावल पर। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे 11:30 पर। लोकमंजरी कार्यक्रम का समय रहेगा 12 बजे। इसमें आज सुनवाए जाएंगे महावीर सिंह चाहर के लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकते हैं 12:30 पर।

दोपहर 1:15 पर पनघट कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा की जाएगी लू और डिहाइड्रेशन से बचाव के उपाय। इस विषय पर साथ ही सुनवाई जाएगी शशिकला द्विवेदी की वार्ता जल है तो कल है। पनघट कार्यक्रम के अन्य आकर्षण रहेंगे दादी का बटुआ, आपकी रसोई और आप सुन सकते हैं लोकगीत भी। 1:45 पर कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत, इसके अंतर्गत आज सुनवाई जाएंगी पंकज उधास की गाई हुई गजलें।

और इसके तुरंत बाद यानी 2:45 पर आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत। लोकप्रिय फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन का समय रहेगा 3:00।

संध्या 5:30 पर आप सुन सकते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ग्रामीणों कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे और 6:30 पर हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम मजदूर मंडल। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिव जी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे हरिहरन और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पीके शर्मा की वार्ता, अनाज भंडारण कैसे करें।
1: किसान भाइयों, अनाज को मुख्यतः चूहों, कीटों, सूक्ष्म जीवों एवं सीलन द्वारा क्षति होती है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि कीटों द्वारा होने वाली क्षति मुख्य रूप से 3 कारणों पर आधारित है। पहला कारण है अनाज में नमी की मात्रा, दूसरा भंडारण में ऑक्सीजन प्राप्ति के स्रोत व साधन तथा उसकी मात्रा, और तीसरा भंडारण में तापक्रम का उतार चढ़ाव। यदि नमी की मात्रा अधिक होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें कीटों का प्रकोप भी अधिक होगा। यदि भंडारण के समय नमी 8-10% या इससे कम कर दी जाए तो ज़्यादातर कीटों का प्रकोप स्वतः ही कम हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि अनाज को गर्मियों के दिनों में कड़ी धूप में सुखाकर ही भंडारण करें। अनाज के दाने भली प्रकार से सूख गए हैं या नहीं, इसकी पहचान के लिए एक दाना दांतों से तोड़ें और वह कट की आवाज़ के साथ कट जाए तो समझ लें कि अब अनाज भंडारण के लिए उपयुक्त है। भंडारण में पुनः नमी की मात्रा न बढ़ जाए इसके लिए आवश्यक है कि भंडारण गृह नमी अवरोधी हो, अन्यथा बरसात के दिनों में पुनः नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और कीटों का प्रकोप होने की संभावना पैदा हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी जीवधारी बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता, अतः अनाजों को वायुरोधक भंडार गृहों में रखा जाए तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है तथा उसकी कमी कीड़ों को मार देती है। कीड़ों के विकास के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कारक तापक्रम होता है, जो कीटों की क्रियाओं को सर्वाधिक प्रभावित करता है। नमी की तरह ही कीटों के विकास के लिए निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के लिए कुछ कीट उष्ण स्थलों का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात एक तापक्रम के लिए एक अपना एक दायरा बना लेते हैं। यदि उन्हें रोक दिया जाए तो कीटों का विकास नहीं हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि भंडारित अनाज को 1-2 बार उलट पलट दें या भंडार गृह में वायु का प्रवेश करा दें। यदि ये 3 सिद्धांतों को भंडारण करते समय ध्यान में रखा जाए तो कीटों द्वारा होने वाली क्षति को काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आप ये भी जानें कि भंडार गृहों में कीट किन किन साधनों से या किन किन स्रोतों से पहुँचते हैं। कुछ कीट जैसे चावल का घुन, दाल का भ्रंग व अनाज का सलव अपने अंडे पकती हुई फसल के बीजों पर

खेत में ही देना आरंभ कर देते हैं और वह दानों के साथ आपके भंडार गृह तक पहुंच जाते हैं। खलियानों के आसपास कूड़े करकट में छिपे कीट मड़ाई के समय अंडे देकर गोदामों में पहुंचते हैं। तीसरा है इसमें कि अनाज ढोने वाली बैलगाड़ियाँ, जिसमें आप अनाज खलियानों से घर तक लाते हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली या कोई मोटर गाड़ी, इनमें जो हानिकारक कीट हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं, जो स्वच्छ अनाज के साथ भंडार गृहों में चले जाते हैं। अधिकतर गांव में ये भी देखने को मिलता है कि किसान भाई अनाज भरने के लिए पुराने बोरों का ही प्रयोग करते हैं। इन बोरों में कीट की विभिन्न अवस्थाएं छिपी होती हैं, मतलब उनके अंडे हैं, लार्वा हैं, हैं ये छिपे रहते हैं, और जब इन्हीं बोरों में आप अनाज भरते हैं तो इन्हीं के साथ गोदाम में ये कीट पहुंचकर पनपने लगते हैं। कुछ प्रौढ़ कीट, मतलब जो पूरे प्रौढ़ होते हैं, जो सीधा नुकसान पहुंचाते हैं, वो उड़कर तथा सूढ़ियाँ, इनके जो लार्वा होते हैं, सूढ़ियाँ होती हैं, वो रेंग कर भंडार गृहों में पहुंच जाती हैं। अतः अनाज को कीटों से बचाने के लिए आवश्यक है कि वह सभी सावधानियाँ अपनाई जाएं जो कीटों को पनपने से रोकने में सहायक होती हैं। जैसे जहाँ तक संभव हो अनाज के लिए पक्के गोदामों या खत्ती का ही निर्माण करें। वैसे गांव में अक्सर देखने को मिलता ही है कि लोग पुरानी खत्तियों में या पुरानी मिट्टी के कुठलों में अनाज को भंडारित कर देते हैं। तो अगर आप इन भंडार गृहों को पक्का कर दें तो इस नुकसान से आप बहुत कुछ बच सकते हैं। इसमें भी ये ध्यान रखना आवश्यक है कि इन भंडारों की दीवारें नमी अवरोधी हों, इनमें नमी कहीं बाहर से आ न जाए। इसके अतिरिक्त गोदामों में स्वच्छ वायु जाने के लिए खिड़कियों का होना भी आवश्यक है। ये खिड़कियाँ भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके भंडार गृह से बाहर से बंद की जा सकें और खोली जा सकें। जो आपकी गोदामों की दीवार हैं उनमें छेद या दरारों को यदि वो आपको कहीं दिखते हैं तो सीमेंट से ज़रूर भर दें, क्योंकि इनमें कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं वो पहले से ही सड़ ले लेते हैं और उनमें छुप जाते हैं। यदि गोदामों के फर्श में, दीवार पर, छत पर कहीं भी कीटों के रहने की संभावना हो तो उसे अनाज भरने से पहले अच्छी तरह से सफाई कर लें तथा एल्यूमिनियम फास्फाइड की 7 गोलियां प्रति 81 घन मीटर स्थान की दर से प्रयोग करें, या 0.3% मेलाथियन का घोल बनाकर 3 लीटर मेलाथियन का घोल बना लें और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोदाम के अंदर उसे छिड़क दें। इससे जो भी कीड़े पहले से गोदाम में मौजूद होंगे वह मर जाएंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि जहाँ तक संभव हो नए बोरों का ही प्रयोग करें। यदि पुराने बोरे ही प्रयोग में लाने हैं जो आपके यहाँ पहले से हैं तो उन्हें 21% या 1% मेलाथियन घोल में 10 मिनट तक डुबाकर सुखा लें। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम बोरों को उलटकर गर्मियों की तेज़ धूप में कम से कम 6 घंटे तक अवश्य सुखा लें। यदि अनाज को बोरियों में रखना हो तो उनके नीचे पर्याप्त मात्रा में भूसे की तह बिछा दें, और यदि ये सुलभ हो सके, अगर आप कर पाएँ, तो यह लकड़ी के तख्तों पर अनाज की बोरियां रखें तो ये सर्वोत्तम होता है। जब भी आप अपने भंडार गृह में या खत्ती में ये बोरियां रख रहे हों तो ये ध्यान भी रखें कि जो भंडार गृह की दीवार है

उससे आपकी बोरी की दूरी कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। यदि अनाज को 100 और 1 के अनुपात में नीम सीड कर्नेल पाउडर के साथ मिलाकर रखें तो कीड़ों का प्रयोग अपने आप ही कम हो जाता है। यदि अनाज में पहले से ही कीटों का आक्रमण हो गया हो तो उसे रखने से पहले ही उपचारित कर लें, विशेष रूप से उस अनाज को जिसे आप

0: से पहले ही उपचारित कर लें, विशेष रूप से उस अनाज को जिसे आप बीज के लिए प्रयोग करना चाहते हैं।
1: खेती की बातें इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पी के शर्मा की वार्ता, अनाज भंडारण कैसे करें। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्ष्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापारनेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारतयात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्णे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम् मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 90,000 टनपरिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य, तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं, पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम्, उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः, प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य

0: द्वितीय दिने प्रसार माध्यमान् संबोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के

दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: gold, 2 silver and 2 bronze, and climbing to the second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched the gold in the women's high jump with a leap of 1.93 meters. India's other 3 gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw, and Rahul Jakhar backed the yellow medal in the men's decathlon. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता। विषय है अल्जाइमर रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह तोमर।
2: इस बीमारी की खोज एक जर्मन डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने की थी। उन्हीं के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। अल्जाइमर रोग में समय से पूर्व भी, अर्थात 50 वर्ष की आयु से पहले ही, अचानक मस्तिष्क की कार्य प्रणाली मंद पड़ जाती है। किन्हीं कारणों से मस्तिष्क के अग्रभाग की रक्त वाहिनियां सिकुड़ने के कारण ही यह बीमारी पैदा होती है। इस रोग के कई कारण हैं, जैसे मस्तिष्क की रक्त वाहिनी की बीमारी या उसमें थक्का जमने से, सिर में गहरी चोट अथवा ट्रॉमा के कारण, मस्तिष्क में ट्यूमर बनने से या खून जमने से, एड्स या सिफिलिस की बीमारी होने के कारण, थायराइड की किसी बीमारी के कारण, लीवर, किडनी या हार्ट फेल होने की वजह से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जहर के सेवन से। अल्जाइमर रोग के कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे रोगी की सामान्य बुद्धि कम हो जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी पहले से काफी कम हो जाती है। रोगी की याददाश्त बहुत कम हो जाती है। इस बीमारी के शुरुआत में याददाश्त थोड़ी सी ही कम होती है। इसका एहसास परिवारजनों को ही हो पाता है। कुछ समय पहले की घटना भी रोगी को याद नहीं रहती है, तथा रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को रखकर रोगी भूल जाता है। रोगी उन लोगों का नाम भी भूल जाता है जिनसे अभी कुछ समय पूर्व भी परिचय हुआ है। किसी से मिलने का वायदा करके भूल जाता है। रोग की अंतिम स्थिति में रोगी को विभ्रम भी होने लगता है। रोगी का व्यक्तित्व भी परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति आपसी व्यवहार तथा सामाजिकता भी भूल जाता है। रोगी का व्यवहार रूखा हो जाता है। वह लोगों की भावनाओं की कद्र भी नहीं कर पाता है। इस तरीके के व्यवहार रोगी को उग्र बना देते हैं। व्यक्ति अपने शरीर का रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं रख पाता है। कभी कभी व्यक्ति घंटों बिना मतलब के निष्काम बैठा रहता है। इस बीमारी के शुरुआत में रोगी का मूड जल्दी जल्दी बदलता रहता है। जैसे जैसे बीमारी का जोर बढ़ता जाता है, उसी के साथ ही रोगी की हताशा, निराशा, बेचैनी तथा चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है। बीमारी की अंतिम अवस्था में रोगी की भावनात्मक प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वह अपने आसपास भावनात्मक लगाव नहीं रख पाता है। बीमारी का पता इस बात से लगाया जाता है कि रोगी के मस्तिष्क की कार्य क्षमता इस समय किस अवस्था में है। यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस तरीके की परेशानी व्यक्ति को पहले जीवन में कभी हुई है अथवा नहीं, तथा यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि उसके परिवार में किसी को यह बीमारी पहले हुई है अथवा नहीं। खून की जांच तथा सिर एवं छाती के एक्सरे से भी बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए सर्वप्रथम ऐसे कारण को खोजना पड़ेगा जो समाप्त किया जा सकता हो। उस कारण के समाप्त होते ही बीमारी ठीक होने लगती है। यदि यह रोग असाध्य हो जाए, उस स्थिति में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जानी चाहिए तथा इसके साथ रोगी तथा रोगी के परिवार को पूरा मोरल सपोर्ट देना चाहिए। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे इस बीमारी में आशातीत लाभ होता है, जैसे एनाकार्डियम,

0: लाइकोपोडियम, हाइपेरिकम तथा कालीफॉस इत्यादि।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरिंद्र सिंह तोमर की वार्ता अल्जाइमर रोग। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति

0: को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
3: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है।
4: इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
2: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांवों के विकास से ही साकार होगा।
5: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव विकसित होंगे।
2: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति

0: दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने टीईटी को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टीईटी पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
0: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा

0: द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। अब प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है और सुबह का समय सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये हमारे जीवन को एक नया मोड़ देने, एक नए सिरे से सोचने और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सुनहरा अवसर होता है। आप जानते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, हाउ यू स्पेंड योर मॉर्निंग कैन टेन टू सेट द टोन ऑफ योर एंटायर डे। यानी आपकी सुबह जैसी बीतेगी, आपका पूरा दिन आमतौर पर वैसा ही गुजरेगा, और होता भी ऐसा है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सुबह कैसी होती है, सोचिए जरा। अलार्म की कर्कश आवाज, हड़बड़ाहट में बिस्तर छोड़ना, चाय की चुस्की के साथ अखबार में नकारात्मक खबरें पढ़ना, या फिर उठते ही मोबाइल स्क्रीन पर दुनिया भर का तनाव देखना। ऐसे में हम सुबह की उस असली जादुई ऊर्जा को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे ठीक आसपास बिखरी होती है। आसपास बिखरी उस ऊर्जा को हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। अब देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल उस कोरे कागज की तरह होता है जो कि शांत और ताजा होता है। उस समय हम अपने दिमाग को जो विचार देते हैं वो पूरे दिन हमारे मूड और हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, यानी हमारी जो कार्यक्षमता होती है, उसको तय करता है। अब सुबह की सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम सुबह सुबह करें। इसका तो बहुत सीधा सा मतलब है कि हम अपने दिन की शुरुआत शांति से करें, कृतज्ञता से करें, एक मुस्कान के साथ करें। सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, सूरज की पहली किरण को देखना और ये महसूस करना कि हम जीवित हैं और हमारे पास एक और नया दिन है अपनी नई कहानी लिखने का, यही सकारात्मकता की पहली सीढ़ी है। साथियों, हम अक्सर बड़ी खुशियों के इंतजार में जीवन के छोटे छोटे सबसे खूबसूरत पलों को अनदेखा कर देते हैं।

और ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ करते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई बड़ा लक्ष्य पूरा होगा, गाड़ी आएगी, घर होगा, प्रमोशन होगा, तभी हम खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है कि बड़ी खुशियां जीवन में कभी कभी आती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं ना, ये तो रोज हमारा दरवाजा खटखटाती हैं। तो इनकी आहट को सुनिए और अपना दरवाजा खोल दीजिए। सुबह के समय मिलने वाली कुछ ऐसी ही छोटी खुशियां जो हमारे दिन को बेहतरीन बना सकती हैं, जैसे आप एक कप चाय या कॉफी सुकून से पिए, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना मोबाइल देखे, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ। खिड़की पर आकर चहकने वाली चिड़ियों की आवाज या बालकनी में लगे पौधों पर खिले नए फूलों को देखना, सुबह सुबह परिवार के सदस्यों को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना, या बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनना, या घर में अगर बड़े बूढ़े हैं तो 2 मिनट उनके साथ बैठना और थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें, गहरी सांस लें, थोड़ा सा स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें। साथियों, उठने के बाद कम से कम पहले आधे घंटे तक हमें सोशल मीडिया, ईमेल्स या न्यूज़ से दूर ही रहना चाहिए। दुनिया की चिंता करने से पहले खुद की चिंता तो कर लीजिए। आंखें खुलते ही भगवान या ब्रह्मांड को इस खूबसूरत जीवन के लिए धन्यवाद भी कहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है अच्छा संगीत सुनना, जिससे हमारे भीतर हैप्पी हार्मोन्स, जिन्हें कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं और उनसे हमारा दिन बन जाता है। तो याद रखिए, जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, हमें चलते रहना है। और इस सफर का हर एक दिन एक नई शुरुआत है। बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे भागना बहुत अच्छी बात है, भागना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाले इन छोटे छोटे खुशनुमा पलों को समेटना भी उतना ही जरूरी है। कल सुबह जब आपकी आंखें खुली तो एक गहरी सांस लीजिएगा, चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाइएगा और अपने आसपास की खुशियों को गले लगाइएगा। याद रखिए, एक सकारात्मक सुबह ही एक खूबसूरत दिन की नींव रखती है। और अगर अपने पलों को आज नहीं जिएंगे तो फिर कब जिएंगे? क्योंकि आने वाला जो पल है वो भी तो जाने वाला है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। मैं हूं आपके साथ विशेष शर्मा। आइए अब चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर का काम तेज कर दिया है। यूपीएमआरसी ने काम करने के लिए शाहदरा से नेशनल हाईवे 19 को जोड़ने वाली रोड को बंद कर दिया है। इससे लाखों लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 4 से 6 किलोमीटर का चक्कर लगाकर लोगों को जाना पड़ रहा है। ट्रैक और स्टेशन के कुछ हिस्से के चलते रोड 3 से 4 माह तक बंद रहेगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक 16 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रैक बन रहा है। इसमें 14 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। इसे 2 भाग में बनाया जा रहा है। इससे कालिंदी विहार सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब लोगों को 4 से 6 किलोमीटर का चक्कर लगाकर निकलना पड़ेगा। इससे टेढ़ी बगिया रोड पर और भी वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा। खेरिया मोड़ रेलवे पुल जर्जर हो गया है। पुल पर भारी वाहन गुजरने से पुल के गिरने का खतरा है। इसी खतरे को भांपते हुए रेलवे के आग्रह पर जिला प्रशासन ने 1 जून से पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। रेलवे ने पुल के जर्जर गार्डर बदलने के लिए भी प्रशासन से पुल को 1 सितंबर से 90 दिन के लिए बंद करने का आग्रह किया है। 1 जून से हाथरस अलीगढ़ रूट पर रोडवेज की बसें फाउंड्री नगर डिपो में बने सैटेलाइट बस अड्डे से संचालित होंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक शुक्रवार को आदेश जारी कर 1 जून से हाथरस अलीगढ़ रूट की बसों को सैटेलाइट बस अड्डे से चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से आगरा से हाथरस अलीगढ़ मार्ग की ओर जाने वाली बसें ISBT सहित सभी से अन्य बस अड्डे से संचालित होने के बजाय सैटेलाइट बस अड्डे से संचालित होंगी। सभी क्षेत्रीय प्रबंधक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि सैटेलाइट बस अड्डे से बसों के संचालन के साथ ही वापसी में यात्रियों को सैटेलाइट बस अड्डे तक ही टिकट दें। हाथरस अलीगढ़ रूट पर रोडवेज की बसें फाउंड्री नगर डिपो में बने सैटेलाइट बस अड्डे से संचालित होने का आदेश जारी होने के बाद अब ऑनलाइन बुकिंग वाली वेबसाइट में भी रोडवेज बदलाव करेगा। ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों को वेबसाइट पर हाथरस अलीगढ़ रूट की बस बुक करते समय बस में बैठने का स्थान सैटेलाइट बस अड्डा ही दिखेगा। रेलवे PRO ने बताया कि सूबेदारगंज बांद्रा

टर्मिनस सुबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 21907 और 21908 मुंबई सेंट्रल काठगोदाम मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 27 मई से हर बुधवार को और काठगोदाम से 28 मई से हर गुरुवार चलेगी। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से सुबह 10:55 पर चलकर अगले दिन सुबह 5:50 पर मथुरा जंक्शन और दोपहर 1:50 पर काठगोदाम पहुंचेगी। ट्रेन काठगोदाम से शाम 5:30 चलकर रात 1:05 पर मथुरा जंक्शन और अगले दिन रात 9:00 मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। ट्रेन में 1 सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 7 स्लीपर और 4 जनरल कोच लगे होंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि गाड़ी संख्या 04139 और 04140 प्रयागराज दादर प्रयागराज के बीच चलने वाली ट्रेन प्रयागराज से 22 मई से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को और दादर से 24 मई से 12 जुलाई तक प्रत्येक रविवार को चलेगी। आगरा से कोटद्वार के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा प्रारंभ होनी चाहिए। शुक्रवार को रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक से भेंट करने पहुंचे गढ़वाल सभा के प्रतिनिधि मंडल ने ये बात कही। रेलवे बोर्ड द्वारा पार्सल वैन की इंडेटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। पीआरओ ने बताया कि नए प्रावधानों के तहत जोनल रेलवे स्टेशन उन स्टेशनों को नोटिफाइड स्टेशन घोषित कर सकेगा जहां पार्सल वैन इनडेट की मांग अधिक रखती है। ऐसे स्टेशनों पर वैगन रजिस्ट्रेशन शुल्क 25,000 प्रति वैगन तय किया गया है, जबकि अन्य स्टेशनों को ये शुल्क 10 रुपये रहेगा। डाक सेवाओं से संबंधित जन शिकायतों के निस्तारण के लिए 9 जून को प्रतापपुरा स्थित प्रधान डाकघर में अदालत का आयोजन किया जाएगा। पोस्ट मास्टर जनरल इसकी अध्यक्षता करेंगे। जिन परिवादों का निस्तारण संबंधित डाक अधिकारियों स्तर पर ना हुआ हो उन्हें 5 जून तक सहायक निदेशक डाक सेवाएं कार्यालय में भेजा जा सकता है। विवाह पंजीकरण में अब वर वधू और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उपनिबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 14,000 लाभार्थियों का लक्ष्य तय किया गया है। पात्र आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को निजी भूमि पर तालाब खुदवाने के लिए 52,500 रुपये अनुदान मिलेगा। भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित है। तालाब का उपयोग वर्षा जल संचयन, मत्स्य पालन और सिंचाई में किया जाएगा। बरसात में शहर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड में आ गया है। नालों पर पक्के निर्माण कर सफाई व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले लोग अब नगर निगम के निशाने पर हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी बड़े और छोटे नालों की 20 जून तक तली झाड़ सफाई सुनिश्चित कराई जाए ताकि मानसून के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारू बनी रहे। नगर निगम के सर्वे के दौरान शहर के कई इलाकों में सामने आया कि लोगों ने नालों के ऊपर आरसीसी स्लैब डालकर पक्के निर्माण कर लिए हैं। इन निर्माणों के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है और नालों की नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों के अनुसार यही स्थिति बरसात में जलभराव का प्रमुख कारण बनती है। इसी समस्या को लेकर नगर आयुक्त के निर्देश पर तत्काल सफाई अभियान चलाया जा रहा है और नाले की सफाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर के सेवारत शिक्षकों को राहत देने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने टीईटी को अनिवार्य बताते हुए सेवा में बने रहने के लिए ये परीक्षा पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग

एसएसएम पर उठे विवाद के बाद केंद्र सरकार छात्रों को पूरी आंसर शीट डिजी लॉकर में उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। ये व्यवस्था अगले साल से लागू हो सकती है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 15 से 22 जनवरी के बीच हुई परीक्षा में अगले चरण के लिए चयनित 6,544 अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता व माप परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 में जीव विज्ञान और उर्दू विषय में 207 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया है। इसमें जीव विज्ञान के 155 और उर्दू के 52 अभ्यर्थियों के आवेदन शामिल हैं। अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे सकेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED प्रशिक्षण सत्र 2026 में आवेदन लेकर प्रवेश लेने के लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP के प्रस्ताव को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT से शुक्रवार को अनुमति मिल गई है। अब 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में मौसम करवट ले चुका है। लगभग सभी जिलों में शनिवार को आंधी के आसार हैं। इसके साथ ही गरज चमक संग बूंदाबांदी और वज्रपात भी हो सकता है। ऐसे में लू प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आएगी, इससे गर्मी में थोड़ी राहत मिल सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानियों के अनुसार बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में झोंकेदार हवा चलेगी। इसकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इन जिलों में गरज चमक संग बूंदाबांदी और वज्रपात भी हो सकता है। इनके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और भी शहरों में आसपास के क्षेत्रों में भी आंधी आएगी। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बारे में जानकारी के लिए अब आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन AI की बारीकियां सीख सकते हैं। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। 3 घंटे के प्रशिक्षण के बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कहीं से भी पंजीकरण कराया जा सकता है।

आइए अब सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार कल्पना कुमारी पुत्री गिरिराज। कल्पना कुमारी की उम्र 19 वर्ष है, ऊंचाई करीब 4 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ है, काले बाल और विलुप्त होते समय इन्होंने काले रंग का लोअर और काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। कल्पना कुमारी अपने घर से 1 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी कमला नगर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं।

0: सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: एक अन्य सूचना के अनुसार गोविंदी देवी, जिनकी उम्र 62

0: अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: एक अन्य सूचना के अनुसार गोविंदी देवी, जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ये 28 अप्रैल 2026 से लापता है। गोविंदी देवी की लंबाई 5 फीट 3 इंच है, काले बाल हैं और विलुप्त होते समय इन्होंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी एतमादपुर जिला आगरा को सूचित कर सकते हैं। विलुप्त व्यक्ति का नाम कृष्णा है और कृष्णा की उम्र 22 वर्ष है। ऊंचाई करीब 5 फीट, रंग गोरा, इकहरा बदन, काली आंखें और थोड़ी पर बाएं तरफ तिल का निशान है। चेहरा लंबा और चपटा है, काले बाल हैं और विलुप्त होते समय कृष्णा ने गेहूं रंग का सूट और प्याजी रंग की पाजामी पहनी हुई है, साथ ही पैरों में चप्पल है। कृष्णा अपने घर से दोपहर 12 बजे 23 अप्रैल 2026 से लापता है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी शमशाबाद जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: एक और सूचना के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति का नाम है नीलम। नीलम अपने घर से 4 मई 2026 से लापता है। नीलम की उम्र 24 वर्ष है, लंबाई 5 फुट 4 इंच, काले बाल हैं और आंखों का रंग भी काला है। विलुप्त होते समय इन्होंने लाल रंग का कुर्ता और लोअर पहना हुआ था। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी एतमादपुर जिला आगरा को सूचित कर सकते हैं।

खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं के बाद आइए एक बार फिर लौटते हैं आजकल की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 31 मई को 27 केंद्रों पर होगी। दो पालियों में आयोजित होने जा रही परीक्षा में 25,500 अभ्यर्थी बैठेंगे। शनिवार दोपहर यानी आज अभ्यर्थियों का शहर में आना शुरू हो जाएगा। रविवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, उसकी एक फोटो युक्त प्रति और फोटो लेकर आना होगा। पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द हुई और दोबारा आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते की जानकारी देने की समय सीमा एनटीए ने 22 जून तक बढ़ा दी है। 21 जून को नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा करते हुए एनटीए ने बताया कि नई परीक्षा के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने यह भी कहा था कि छात्रों द्वारा पहले से भुगतान किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा। एनटीए ने 22 मई से 26 मई तक नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर शुल्क वापसी की प्रक्रिया के लिए बैंक खाता विवरण देने की सुविधा प्रदान की थी। बुधवार को एनटीए ने बताया कि अब तक लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता विवरण दे दिया है। इसी के साथ दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
2: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
4: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
2: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?

0: म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज

0: आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो मगरबी एशिया महाजाराई जारी रहने के पेश नजर एलपीजी के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जजगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज बिहार में बौद्ध गया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदाम का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरांदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का 6ठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदादोशुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे यह बात खासतौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद और शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जच्ची के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जच्ची के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में खवातीन के हामला होने की मजमू शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मनसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में खवातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियारात के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन खवातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बौद्ध गया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में वो नई दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तिहाती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।

0: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders.
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: This is official visit and we look forward to welcoming the President of Myanmar.
2: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनअतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकद्दम मशरिक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
3: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान डीके शिव कुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक उनसे निगरान वजीर आला के तौर पर फरायज अंजाम देने को कहा है। इस दौरान कांग्रेस के सभी 136 अराकीन असेंबली को कानून साज पार्टी मीटिंग में शरीक होने से मुतालिक सर्कुलर जारी किया गया है। पंजाब मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में बरसर इख्तदार आम आदमी पार्टी ने 1977 में से 958 वार्ड्स में जीत दर्ज की है। रियासत की 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों में ये इंतखाबात हुए थे। कांग्रेस ने 397, श्रोमणी अकाली दल ने 192 और बीजेपी ने 172 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की है। बीएसपी महज 7 वार्ड्स में ही कामयाबी हासिल कर सकी। दिलचस्प बात यह है कि आजाद उम्मीदवार 251 वार्ड्स में जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं। 26 मई को पंजाब के शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में हुए इंतखाबात में कुल 7,554 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रियासत गोवा आज अपना यौम तासीस मना रही है। आज ही के दिन साल 1987 में गोवा को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया गया था और इस तरह यह भारतीय यूनियन की 25वीं रियासत बन गई थी। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन पणजी की कला अकादमी में गोवा यौम तासीस तकरीबात में शिरकत करेंगे। ये मौका गोवा की आजादी से लेकर इंसानी तरक्की और म्यारे जिंदगी के मामले में भारत की सरकर्दा रियासत बनने तक के गोवा के सफर की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान आज रियासत की गुज़श्ता 4 दहाई के दौरान जो तब्दीली हुई है उसे नुमाया किया जाएगा। 1961 में पुर्तगाली तसल्लुत से आजादी हासिल करने के बाद गोवा दमन और दीव के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाका बन गया था। 1967 में फैसला कुन लम्हा तब आया जब गोवा के लोगों ने गोवा की मुनफरिद शनाख्त को बरकरार रखने के लिए तारीखी ओपिनियन पोल में हिस्सा लिया। साल 1987 में कोंकणी जबान को सरकारी जबान का दर्जा मिलने से गोवा के रियासत बनने की राह हमवार हुई और उसी साल 30 मई को गोवा भारत की 25वीं रियासत बन गई। गोवा की यौम तासीस तकरीबात के दौरान नायब सदस्य सीपी राधाकृष्णन आज सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का दौरा करेंगे, जहां वो तहकीक और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नुमाइशी अशिया का मुशाहिदा करेंगे और साइंसदानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान नायब सदर सीएसआईआर एनआईओ कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। पणजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
3: इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गोवा के यौम तासीस के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। जनाब शाह ने कहा कि गोवा सकाफत और विरासत का अजीमुशान इम्तिजाज है जो दुनिया के सामने गर्मजोशी से भरपूर भारतीय जियाफत का चेहरा पेश करता है। जनाब शाह ने कहा कि रियासत गोवा मुल्क की तरक्की और फख्र के मामले में अपना ताउन जारी रखेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजों से ज्यादा मौसर तरीके से निपटने के लिए सरहदी मुहाफिज फोर्स बीएसएफ को इजाफी जिम्मेदारियां देने पर गौर कर रही है। जनाब शाह ने कल गुजरात के भुज में बीएसएफ एहलकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। इस दौरान जनाब शाह ने भारत पाकिस्तान सरहद पर स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम 2 नई सरहदी चौकियों का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने मजीद कहा कि बीएसएफ के कयाम के 60वें साल के मौके पर सरहदी हिफाजत के बीएसएफ के नजरिए को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फैसला किया गया है। जनाब शाह ने महज सरहदी सलामती के रिवायती नुक्ते नजर को इलाकाई सलामती के नए नुक्ते नजर से बदलने के मकसद से क्वाड्रेंगुलर सिक्योरिटी ग्रिड के कयाम को मुतारिफ कराने का ऐलान किया है।

0: भारत के महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और चंडीगढ़ में झालाबारी के साथ आंधी तूफान की पेशगोई भी की है। महकमे ने शुमाल मशरकी रियासतों और साहेली कर्नाटक में गरज चमक के साथ आंधी तूफान का इम्कान जाहिर किया है, जबकि मगरबी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। हांगकांग में जारी 20 साल से कम उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। सोने के 4, चांदी और कांसे के 2-2 तमगे समेत कुल 8 तमगे जीतकर दर्जाबंदी में भारत चीन के बाद दूसरे मुकाम पर पहुंच गया है। कल मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय एथलीट्स ने 4 सोने के तमगे समेत 7 तमगे जीते हैं। 19 साल की पूजा सिंह ने खवातीन की 1.3 मीटर की हाई जंप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने का तमगा जीता है। भारत के लिए दीगर 3 सोने के तमगे नितिन गुप्ता, अमानत कंबोज और राहुल जाखड़ ने हासिल किए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए सेकेंड क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ अब कल अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस और दिफाई चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। राजस्थान रॉयल्स की जानिब से जीत के लिए मुकर्ररा 215 रन के निशाने को गुजरात टाइटंस ने 8 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 219 रन बनाकर हासिल कर लिया। शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 104 रन बनाए, जिन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए, अलबत्ता वो एक बार फिर सेंचुरी बनाने से चूक गए। खवातीन क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में दूसरे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच में भारतीय टीम 3 मैचों की सीरीज को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगी। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जुमेरात के रोज चेम्सफोर्ड में खेले गए इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड को 38 रन से शिकस्त देने के बाद भारत ने सरदस्त सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शासुर्खी बनाया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक चौकी पर जवानों से बातचीत की और 14 निगरानी चौकियों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरहदी इलाकों के लिए 4 रुखी सिक्योरिटी ग्रिड बनेगी। इस खबर को रोजाना प्रताप ने जड़ी सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजाना प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले बहादुर फौजियों के तजर्बात पर मबनी किताब के रस्मी इजरा की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किताब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश करती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल मईशत बनकर उभरा, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 की रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। रोजामा इंकलाब ने अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान को बड़ी अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुतअद्दिद निकात पर इत्तेफाक राय में पेशरफ्त हुई है, नीज आबनाए हुरमुज में बहरी ट्रैफिक की बिला तातुल बहाली यकीनी बनाई जाएगी। आज के बेशतर अखबारात ने उर्दू के नाम और शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद के इंतकाल पर उर्दू दुनिया उनके मद्दाहों की तरफ से जबरदस्त खराज अकीदत पेश किए जाने और ताजियती नशिस्तों के अहतमाम की खबर पर भी खसूसी तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वह मगरबी एशिया महाजराई जारी रहने के पेश नजर LPG के जखीरे 30 दिन तक बरकरार रखें। खानदानी सेहत के कौमी सर्वे से माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में बड़े फायदों का पता चला है। इदारा जाती जचगी में इजाफा होकर ये 90.6% हो गई है और बच्चों की टीकाकारी 96% हो गई है। म्यांमार के सदर मिन ऑंग ह्लैंग भारत के 5 रोजा दौरे के पहले मरहले में आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचेंगे। भारत के महकमे मौसमियात ने आज मुल्क की बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। हांगकांग में 20 साल तक की उम्र की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट्स का बोलबाला रहा। उन्होंने दूसरे दिन सोने के 2 तमगों समेत 7 तमगे जीते हैं। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल मैच खेलने को यकीनी बना दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन।

0: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, बोल आनंद बख्शी के हैं। गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अमृत।
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

0: आठवीं मंजिल पर रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे ले

मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूँ। उस आदमी ने पूछा, कहाँ है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा, हुजूर

अमृत। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं बप्पी लहरी की धुन पर अनजान के बोल। आवाज़ें हैं अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है शराबी।

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा, आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे।

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं।

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

शराबी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत को लिखा था अनजान ने और संगीत से सवारा था बप्पी लहरी ने। आइए अब सुनते हैं हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की धुन पर। आवाज किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है अंदाज़।

0: झुमरू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और धुन बनाई थी किशोर कुमार ने।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। संगीत सपन चक्रवर्ती का है, फिल्म का नाम है जमीर।

जमीर फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अपना देश फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: अपना देश फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न हुआ। ये
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
2: संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कर

0: करवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार सिन्हा को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलो अप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीर नगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रखरखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
2: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल अकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया।

0: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गईं। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म आराधना से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन एसडी बर्मन ने बनाई है।
3: बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
4: है।
3: गर्मियों से निखार है?
4: है।
3: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: इस गीत को हमने लिया था फिल्म आराधना से। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत एसडी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं गुलशन बाबरा के बोल कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आवाज़ें हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की, फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

रफू चक्कर फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में तेरे घर के सामने इस फिल्म का गीत। गीत को लिखा है असरत जयपुरी ने और संगीत एस डी बर्मन का है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में नीरज की लिखी रचना। संगीत SD बर्मन का है, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी।

अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में 16वां साल फिल्म का गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवारा था SD बर्मन ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम तिवारी के गाए हुए लोकगीत। आइए सुनते हैं ये पहला लोकगीत।

प्रेम तिवारी के गाए इन्हीं लोक गीतों के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी का आगरा केंद्र। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। लीजिए सुनिए सबसे पहले सोनू निगम की आवाज में जावेद अख्तर के बोल। संगीत शंकर एहसान लॉय का है। फिल्म का नाम है कल हो ना हो।

कल हो न हो। जी हाँ, सुनकर गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत शंकर एहसान लॉय का था। आइए अब सुनते हैं फना फन का ये गीत, जिसे गाया है शान और कैलाश खैर ने। बोल प्रसून जोशी के हैं, गीत को संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। आइए आप सुनते हैं परदेश फिल्म का ये गीत जिसे गाया है सोनू निगम और हेमा सरदेसाई, साथ ही साथ आवाज है शंकर महादेवन की, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

परदेश। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाजों में। बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत नदीम श्रवण का था। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजों में गुलजार के बोल। संगीत ए आर रहमान का है, फिल्म का नाम है दिल से।

दिल से इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और हेमा सरदेसाई की आवाजों में। अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

सुरसरिता कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म कभी खुशी कभी गम से। आवाजें हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की, समीर के बोल हैं और संगीत संदेश चांडल्य का।

कभी खुशी कभी गम इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित विश्वनाथ का राग ललित में गाया ख्याल। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं रैन का सपना। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं जोगिया मोरे घरा। लीजिए सुनिए पंडित विश्वनाथ का गाया राग ललित।

Magareda, ni da magareda, magareda, ni da magareda.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वनाथ से राग ललित में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आ चुकी है आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी और उस कार्यक्रम का नाम है आज के कलाकार। श्रोताओं, अभिनय एक ऐसी कला है जो आपकी रियल पर्सनालिटी से आगे बढ़कर आप जिस किरदार में ढलना चाहते हैं वैसा ही आपको बना देती है। आप खुश हैं पर भाव दुख का दे रहे हैं, आप गुस्सा हैं पर भाव प्यार का दे रहे हैं, आप खुद बहुत मजबूत हैं पर सामने वाले को एकदम लाचार और कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। अभिनय तो लगभग हर कोई करना चाहता है क्योंकि इसमें शोहरत भी है और दौलत भी है, पर ये हुनर हर किसी के बस में नहीं है। तो हमारा आज का ये शो समर्पित है उस अभिनेता को जिसकी आंखों का एक्सप्रेशन आधी कॉमेडी कर देता था, जिसने अपने डायलॉग से पेट पकड़ पकड़ के हंसने पर मजबूर कर दिया, तो कभी विलन बनकर इतना डराया कि नफरत हो जाए उस किरदार से। तो आज बस

इतना ही हिंट देती हूँ कि उस अभिनेता का आज जन्मदिन है। क्या इतने से काम नहीं चलेगा? तो चलिए उनके फिल्म का एक गीत सुनाते हैं आपको, फिर तो पता चल ही जाएगा कि आज के कलाकार हैं कौन।

याद कीजिए इस फिल्म में उनका वो रोल जिसमें जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो हर कोई परेशान हो जाता है।

हाँ जी श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दमदार अभिनेता परेश रावल की, जिनका जन्म 30 मई 1955 को एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था दहिया भाई रावल। परिवार बेहद सामान्य था, लेकिन संस्कार और मेहनत पर विश्वास करने वाला था। मुंबई जैसे शहर में पले बढ़े परेश रावल बचपन से ही शरारती और मजाकिया स्वभाव के थे। पढ़ाई में कम और थिएटर में ज्यादा रम जाने वाले परेश रावल कॉलेज के दिनों में ड्रामा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लगे और धीरे धीरे मंच ही उनकी दुनिया बन गया। श्रोताओं, यहाँ तक पहुँचने में बहुत संघर्ष भी किया है परेश रावल ने। शुरुआत में इन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलते थे, फिर 1984 में फिल्म होली और फिर अर्जुन जैसे फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डायरेक्टर्स को भी समझ में आने लगा कि ये आदमी सिर्फ अभिनय नहीं करता, किरदार को जीता भी है। 90 का दशक आते आते परेश रावल बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद कलाकारों में शामिल हो चुके थे। परेश रावल की सबसे बड़ी ताकत जो थी वो थी उनकी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की कि बिना जोर जोर से बोले ही वो दर्शकों को हंसना सिखा देते थे। अरे हाँ, टाइमिंग से याद आया कि एक और गीत सुनने का भी टाइम आ चुका है।

Dani, Dani, Dani.

श्रोताओं, अब बात करते हैं परेश रावल की निजी जिंदगी की। तो उनकी पत्नी जिनका नाम है स्वरूप संपत, जो अभिनेत्री होने के साथ साथ 1989 की मिस इंडिया भी रही हैं। परेश रावल के संघर्ष के दिनों में बतौर एक प्रेमिका उन्होंने बहुत साथ दिया, लेकिन शादी के लिए 12 साल तक लंबा इंतजार भी किया, क्योंकि परेश रावल चाहते थे कि वे पहले अपने पैरों पर खड़े हों फिर शादी करें। 1987 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज भी बॉलीवुड में इन दोनों की जोड़ी को बेहद सम्मान से देखा जाता है। इन दोनों के दो बेटे भी हैं, आदित्य रावल और अनिरुद्ध रावल। आदित्य अब अभिनय की और लेखन की दुनिया में कदम जमा चुके हैं, लेकिन खास बात यह है श्रोताओं कि परेश रावल ने कभी अपने बेटे को स्टार किड वाला विशेष फायदा नहीं दिया। उनका मानना है कि सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो एक और गाना हम भी सुनते हैं।

श्रोताओं, वेलकम फिल्म को याद करते ही अक्षय कुमार और परेश रावल की जोड़ी बहुत याद आती है। आपको याद है वो एक तालमेल, कॉमिक टाइम

श्रोताओं, डायरेक्टर प्रियदर्शन के तो परेश रावल बेहद पसंदीदा एक्टर्स में से एक हैं। हंगामा, गरम मसाला, भूल भुलैया, माला माल वीकली जैसी फिल्मों में उनके लिए अभिनय का जादू तो आज भी बरकरार है। सिर्फ यही नहीं श्रोताओं, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, वेलकम, ओ एम जी, सर तमन्ना, चाची 420, जुदाई और भी न जाने कितने फिल्में अभी मेरे जहन में आ रही हैं, है ना? आपको भी याद आ रही होंगी ना श्रोताओं, याद है फिल्म तमन्ना, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था जो एक बच्ची को पालता है। उस फिल्म में उनका अभिनय इतना गहरा था कि दर्शकों की आंखें भी नम हो गई थी। श्रोताओं, परेश रावल की जिंदगी हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देती है कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो देर से ही सही दुनिया आपको पहचान ही लेती है, आपको सम्मान भी देती है। श्रोताओं, परेश रावल को फिल्म सर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। परेश रावल के बोले डायलॉग्स आज के सोशल मीडिया के रील्स में भी काफी फेमस हैं। अपने उम्दा अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले परेश रावल को उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी आगरा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। श्रोताओं, सुनिए एक और गीत और परेश रावल पर आधारित आज के कलाकार कार्यक्रम से मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत।

करती हूँ आज के कलाकार कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मीडियम वेव 196.1 मीटर था 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर एक बार फिर से उपस्थित है आपके रेडियो हमसफर मुकुल तिवारी। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में बातें होती हैं हमारे और आपके जीवन से जुड़े उन तमाम विषयों की जिसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है, और साथ ही साथ हम आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्यारे प्यारे से गीत भी सुनाते हैं। तो श्रोताओं, हम जिंदा तो हैं क्योंकि प्रकृति हमें सांसें दे रही है, पीने के लिए पानी दे रही है, जमीन दे रही है ताकि उसमें हम अनाज और फल उगा सकें और अपना पेट भर सकें, सेहतमंद रह सकें। सिर्फ हम ही क्यों, पशु पक्षी भी। अब भाई, प्रकृति पे सिर्फ हमारा तो अधिकार है नहीं, जीव जंतुओं का भी है। ये रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़, कल कल करती नदियाँ, ये झरने, चहचहाते पक्षी भी तो प्रकृति पे ही निर्भर है ना। तो प्रकृति में इनकी हिस्सेदारी भी समान बनती है। लेकिन चूंकि हमारे पास दिमाग है और साथ ही साथ लालच भी है, तो हमने प्रकृति को अपना मान लिया है। लेकिन इस अपनेपन में भी सुरक्षा संरक्षण नहीं बल्कि दोहन है, शोषण है। अपना हित है, खुद के फायदे के लिए बस प्रकृति से छीनते जाओ और बदले में प्रकृति को सताते जाओ। कल्पना कीजिए श्रोताओं, एक सुबह हम जगें तो देखें कि पक्षी चहचहा नहीं रहे हैं, पेड़ में पत्ते जो हैं वो पीले पड़े हुए हैं, नदी सूखी पड़ी हुई है।

हवा गर्म चल रही है, जमीन बंजर पड़ी हुई है, कहीं बारिश है तो कहीं भयानक बाढ़ आया हुआ है, कुछ है ही नहीं। जो लोग जिंदा हैं वो क्या करें? हर तरफ लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ, डर सा लगा ना? बस यही तो वो स्थिति है जिसे आने से हमें रोकना है। तो आज इस कार्यक्रम में इसी विषय यानी कि प्रकृति संतुलन के जल जंगल और जंतुओं का संरक्षण जरूरी विषय पर हम बात करेंगे। लेकिन अब इस डर से, इस कल्पना से थोड़े बाहर निकलते हैं और प्रकृति के जो हमारे अभी पास मौजूद है उसकी खूबसूरती को बयां करता हुआ ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, कल मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई थी। उनके घर में कोई मेहमान भी आए हुए थे, तो जब उन्होंने उन लोगों को पानी पीने के लिए दो ग्लास दिया, तो मेहमानों ने एक एक घूंट पीकर ग्लास को रख दिया। मतलब ये कि दो ग्लास पानी बर्बाद। अब दो दो ग्लास करके जाने कितने लीटर पानी हम रोजाना बर्बाद कर देते हैं, कभी सोचा है आपने? या फिर यूं कहें कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना पानी बिना वजह हम नाले में बहा देते हैं, जैसे कि दाढ़ी बनाते वक्त नल बंद ना करना, झरने से नहाना, किचन में काम करते वक्त नल को खुला छोड़ देना, या फिर कोई कार या कोई भी व्हीकल धोते हुए पानी का बेवजह बर्बाद करना। श्रोताओ, पृथ्वी पर 71% जो भाग है पृथ्वी का वो पानी से ढका हुआ है, पर उसका 97% पानी खारा है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। तो सिर्फ 3% पानी पीने लायक है, और इस 3% पानी पर पूरा विश्व निर्भर है। तो सोचिए जरा कि हमारे हिस्से कितना पानी आया और उस पानी का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। श्रोताओं, बिन पानी सब सुन, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक्शन में होता है। पानी का संरक्षण करना बेहद जरूरी है, तो बस छोटे छोटे से बदलाव और सतर्कता से ये सब कुछ संभव है। तो शुरुआत आज से ही करें, बल्कि अभी से करें, और ध्यान दें कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है और क्या उसे जाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए।
1: गीते लम्हों की कलियां, हाँ वक्त झरने सा बहने लगे।

श्रोताओं, अपने फायदे के लिए हम बहुत तेजी से पेड़ की कटाई किए जा रहे हैं। अब तो जिधर देखो उधर ही इमारतें हैं, कारखाने हैं। भाई, इतनी जमीन हमारे पास नहीं थी। यहाँ कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे जिनका सफाया करके ये इमारतें खड़ी की गई हैं, ये कारखाने बनाए गए हैं, बिना ये सोचे कि उन पेड़ पौधों पे पंछियों का घर हुआ करता था। और हद तो तब हो गई जब हम जंगलों की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सुनो, जंगल का मानव जीवन में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। लकड़ी, औषधि, फल, रबर, ये सब जंगलों से ही तो आते हैं। जंगल बाढ़ आने से रोकते भी हैं और बारिश भी कराते हैं। जंगल को खत्म करना मानो विनाश को न्योता देना है। कई पशु पक्षी सिर्फ जंगलों में ही रह सकते हैं। अगर जंगल नहीं हुआ तो सोचिए, सोचिए जरा।

पृथ्वी की या प्रकृति की रक्षा करना या उसको संरक्षण देना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो प्रदूषण पर नियंत्रण लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, कूड़े को सही जगह फेंकें, वाहनों और उद्योगों से जो प्रदूषण होते हैं उनको उनके लिए जागरूक बने और उस पर काम करें। ऊर्जा की बचत करें, बिजली का अनावश्यक उपयोग ना करें, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का अपनाएं, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें, पर्यावरण के प्रति खुद भी जागरूक हों और बच्चों को भी करें।

श्रोताओं, अगर आज आप जागरूक नहीं हुए और आज अगर आपने संरक्षण नहीं किया, अगर प्रकृति को नहीं बचाया, तो कल हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं? तो भाई, आज अगर हम ये सब कुछ, ये हरियाली, ये पशु पक्षी, ये रंग बिरंगे फूल देख पा रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भी हक है कि वो देखें और फिर गुनगुनाएं।

श्रोताओं, अगर प्रकृति हमारी रक्षा करती है तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम प्रकृति की रक्षा करें और उसके द्वारा दिए गए बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करें। श्रोताओं, बात अगर संतुलन की है तो सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, इंसानियत में भी होनी चाहिए, है ना। प्रेम, धैर्य, करुणा का संरक्षण भी जरूरी है। इतिहास में भी कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ धर्म की बात नहीं की, इंसान को इंसान बनना भी सिखाया। आज शहादत दिवस है,

सिख धर्म के लिए शहीद होने वाले पहले गुरु अर्जुन देव जी की याद में आज ये दिन मनाया जाता है। श्रोताओं, उस दौर में जब समाज, जाति और भेदभाव में हमारा देश बटा हुआ था, तब गुरु अर्जुन देव जी ने हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात की। उन्होंने अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। बहुत यातनाएं सही उन्हें सहनी पड़ी। उन्हें साहस और सहनशीलता की मिसाल गुरु अर्जुन देव जी ने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सच्चाई और विश्वास का दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज गुरु अर्जुन देव जी को याद करते हुए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी कि कुछ बातें कुछ गीत यहीं समाप्त होता है। हम मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी कि 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी, जिसमें आज के कलाकार हैं महावीर सिंह चाहर।

रूपमंजरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महावीर सिंह चाहर से कुछ लोक गीत। इसी के साथ रूपमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने।

अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म उमराव जान का ये गीत। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार थे अनु मलिक। विवाह, इस फिल्म में सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

वॉन्टेड। इस फिल्म में सुन रहे हैं आप शान और श्रेया घोषाल की आवाज में अरुण भैरव का लिखा गीत, संगीत है साजिद वाजिद का।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे विधु विनोद चोपड़ा का लिखा गीत। संगीत था शांतनु मोइत्रा का और फिल्म का नाम था वजीर। श्रोताओं, नई तरानी कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म से आवाज़ है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की, संगीत है प्रीतम का।

अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की गाये फिल्म ये जवानी है दीवानी के इस गीत के साथ ही नई दरानी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद।

0: देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो ज़िगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindoor 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharagwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges.
3: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
2: Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The President is also scheduled to visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vijay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 PM today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavar Chand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. 7 people have died in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths. 2 deaths have been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying

0: करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत आईएनएस गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहाँ पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
0: हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाजों की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी जखीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली जखीरों के तवसुत से ईंधन तहफ्फुज मजबूत करने और बगैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी की कमी की कोई खबर नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में एनटीए के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत

0: जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और ये यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। डीडी न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-1118-004 और रिजल्ट CBSE2026@CBSEshiksha.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 अजला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई इजला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक खातून समेत 2 अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वजीर आला ने रियासती आवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: Radio 96.1 MHz 13530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है पनघट।

स्वागत है बहनों आप सभी का कार्यक्रम ग्रामीलोक में, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी शोभना। तो बहनों कैसी हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त भी होंगी। भाई बहनों गर्मी है भी तो पूरे अपने ज़ोर पर ही, काम करने का मन तो नहीं करता इतनी गर्मी में। पर बीच बीच में क्या होता है ना, ये आंधी तूफान जो आता है, बारिश आती है तो मौसम थोड़ा ठीक सा हो जाता है, पर फिर से धूप निकल आती है तो फिर से गर्मी हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, पानी कम पीते हैं। तो उससे होता क्या है, जो ये हमारी ज़रा सी लापरवाही है ना, हमें लगता है कि नहीं पानी पिया तो कोई बात नहीं, पर बहनों ये लापरवाही है, इससे होता क्या है, आपको लू लग सकती है, पानी की कमी हो सकती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। और बहनों हमारी जो बहनें हैं ना, सुबह से ही काम में लग जाती हैं, कोई चूल्हे चौके में लग जाती है, कोई पशुओं के साथ लग जाती है, तो कोई खेत खलिहान में। ऐसे में होता क्या है, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखती हैं और पूरे घर का ध्यान रखती हैं। बहनों अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने घर परिवार का। पर अगर आप पानी पीती हैं या थोड़ी सी सावधानी रखती हैं, तो इस मौसम में भी आप एकदम स्वस्थ रह सकती हैं और ख़ुद को इस गर्मी के मौसम में बीमारियों से बचा सकती हैं। बस करना क्या है, रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों का ही तो ध्यान रखना है, और गर्मी को कहिए कि हम तैयार हैं। बस आपको पानी को अपना दोस्त

0: बना लेना है। प्यास लगे तब पानी पिएंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है बहनों। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए, और हमें पता है कि हमारी बहनों ने मटका तो रखा ही होगा अपनी रसोई में, तो बस करना क्या है, घंटी मटके में डालिए, निकालिए और चुल्लू बना के पी लीजिए बस। थोड़ी थोड़ी देर में आप मटके का पानी पीजिए, छाछ है, लस्सी है, नींबू पानी है, बेल का शरबत है, आम का पना है, ये सारी चीज़ें शरीर को ठंडक तो देती ही हैं, साथ में ताकत भी देती हैं। गर्मी में हल्का खाना सबसे अच्छा रहता है, दही है, हरी सब्जियाँ, दाल, सलाद, मौसमी फल, ये सब चीज़ें तो आप ज़रूर खाइए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये तो गर्मी के सच्चे साथी हैं। और धूप से थोड़ा सा बचकर, दोपहर की तेज़ धूप में अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से बचिए। और बहनों, अगर जाना भी पड़ जाए ना तो सिर पर दुपट्टा रख लीजिए, और हमारे किसान भाई हैं वो गमछा रख लें या टोपी पहन लें। बहनों, होता क्या है ना, जब हमें लू लगती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कुछ संकेत देता है। वो बात अलग है कि हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते, पर अगर जिसने समझ लिया वो बच गया। तो जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, सिर भारी लग रहा है या फिर कमज़ोरी सी हो, तो समझ जाइए कि शरीर आराम तो मांग ही रहा है, साथ में शरीर हमारा पानी भी मांग रहा है। तो ऐसे में अगर आप बाहर हैं तो आप तुरंत छांव में बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, और बहनों ORS का घोल भी तो है, वो भी आप ले सकते हैं बहनों। और सबसे आसान हम आपको घर का नुस्खा बताते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 चम्मच चीनी डालिए और 1/2 चम्मच नमक मिला लीजिए, बस तैयार है घर का घोल, जो शरीर को जल्दी राहत देता है। और हाँ बहनों, पूरे परिवार की चिंता करते करते अपनी सेहत को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि घर की रौनक तभी रहती है ना जब घर की महिलाएं स्वस्थ और खुश रहती हैं। तो बहनों, इस गर्मी में अगर खुद को लू और डिहाइड्रेशन से बचाना है तो आपको करना क्या है, खूब पानी पीजिए, हल्का खाना खाएं और धूप से थोड़ा बच जाए। बस इन्हीं छोटी छोटी सी बातों में छुपा हुआ है सेहत का बड़ा राज। और बहनों, कहा भी तो गया है कि जल है तो कल है। जल केवल हमारी प्यास ही नहीं बुझाता बहनों, बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और आने वाले कल की भी रक्षा करता है, खास करके गर्मी के दिनों में जब तापमान लगातार बढ़ रहा है, तब पानी का महत्व तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तेज़ धूप और गर्म हवाओं के कारण लू लगने और शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की समस्या तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए बहनों, इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, सुनते हैं वार्ता जल है तो कल है, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रही हैं शशिकला द्विवेदी। तो बहनों आइए सुनते हैं और जानते हैं कि पानी का महत्व हमारे जीवन और स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, और गर्मी के मौसम में ये हमें लू और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से बचाने में कैसे मदद करता है।
1: जल से ही पृथ्वी पर जीवन, जल की अमिट कहानी है, जल के बिना न जीना संभव, जल से सकल रवानी है। अर्थात जल से ही हमारी धरती पर जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब जल के ही कारण है। जल जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी का जीवन जल से ही गतिमान है। जल है तो जीवन है, जल है तो गति है, जल है तो जीवन में सरसता है, जल है तो जीवन में आनंद है। अतः जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जल हम सभी की प्यास को ही शांत नहीं करता, वरन हमारे जीवन से जुड़ी हुई जल हम सभी की प्यास को ही शांत नहीं करता, वरन हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं जल के द्वारा ही

पूरी होती हैं। जल के बिना इस जगत में न स्वच्छता है और न सुंदरता। जल के बिना न हम हाथ मुंह धो सकते हैं, न अपने कपड़े और न जूठे बर्तन। हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जल पर ही आश्रित है। हम सभी अपनी भूख मिटाने के लिए जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, सभी जल के द्वारा ही उत्पन्न और बनाए जाते हैं। अतः पानी के बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जल को धरती का अनमोल खजाना कहना भी अतिशयोक्ति न होगा। जीवन के लिए परम आवश्यक जल की कमी आज एक ज्वलंत समस्या है। यद्यपि हमारी पृथ्वी का 70% भूभाग जल से ही घिरा हुआ है, तथापि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी मात्र 3% ही है। बढ़ती जनसंख्या और घटते जल स्तर ने जल की कमी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जल की उपयोगिता और महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि समाज और सरकार जल के संचय, प्रबंध और संरक्षण पर भरपूर ध्यान दें। जल संकट से ग्रस्त मनुष्य के सामने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार इस समस्या से हमारी धरती मुक्त हो। इस प्रकार जल संरक्षण आज संसार की सबसे पहली प्राथमिकता है। जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय यहाँ प्रासंगिक हैं। आज हमें घर में, घर के बाहर, बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में जल के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम हमें अपने घरों में आवश्यकता के अनुसार ही पानी खर्च करना होगा तथा पानी की बर्बादी पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भी पानी की बर्बादी रोकनी होगी। अगर कहीं व्यर्थ बहता हुआ पानी दिखाई देता है तो संबंधित विभाग को या संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा। पानी की खपत कम करने के लिए कृषि और कल कारखानों में भी नई तकनीक को अपनाना होगा। वृक्ष हमारे और हमारी प्रकृति के घनिष्ठ मित्र हैं, अतः हमें वृक्षारोपण पर भी ध्यान देना होगा तथा संतान की भांति लगाए हुए वृक्षों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वृक्ष हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ धरती की नमी को बनाए रखना, जमीन के कटाव को रोकना, बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना भी वृक्षों का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित करके उसका प्रयोग विविध घरेलू कार्यों और कृषि आदि में करके भी जल संकट की समस्या से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज आवश्यक हो गया है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन एक दूसरे के सहयोग से जल के विविध स्रोत जैसे नदी, तालाब, नहर, झरने आदि के जल को प्रदूषित होने से बचाएं तथा जल की बर्बादी पर रोक लगाएं। मेरी दृष्टि में यह भी आवश्यक है कि हम जल के प्रति अपने मन में आस्था और श्रद्धा का भाव जागृत करें, उसके सदुपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करें तथा उसके दुरुपयोग से बचें। वर्षा के जल को संचित करने के लिए तालाबों की खुदाई तथा बावड़ी आदि का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्षा के द्वारा प्राप्त पानी को प्रत्येक घर में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक नगर में संचय किया जाए। वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम के द्वारा धरती के गर्भ में पहुंचाया जाए। भूजल के अंधाधुंध दोहन पर रोक

0: लगे। हम जल के प्रति अपने मन में मरुस्थल में रहने वाले लोगों की भांति श्रद्धा और आस्था का भाव जगाएं। हम सभी मिलकर जल का सदुपयोग करें तथा पानी के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, उनको जल का दुरुपयोग करने से रोकें। इस प्रकार हम सभी जल के उचित संचय, प्रबंध और संरक्षण के द्वारा मानव सभ्यता के कल को सुरक्षित कर सकेंगे। निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकती हूँ कि जल पृथ्वी की बहुमूल्य निधि है। धरा को वसुंधरा बनाने में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जल है तो जीवन है, जल है तो स्वच्छता है, जल है तो सुंदरता है। जब तक धरती पर तालाब, झरने, नदियाँ और नहरें हैं, जब तक ये सभी जल से परिपूर्ण हैं, तब तक पृथ्वी का कण कण उपयोगी है, आकर्षक है और मनोहर है। जब तक हमारी धरती पर पानी है, तब तक ही हमारा जीवन है। जब तक धरती पर जल है, तब तक ही पृथ्वी पर पक्षियों का कलरव है। जब तक धरती पर पानी है, तब तक ही नदियों का मधुर कलकल है और झरनों का मनोहर संगीत है। इस धरा पर जब तक जल है, तब तक ही हलचल है। जब तक जल है, तब तक ही हमारे खेतों में, हमारे बागों में, हमारे उपवनों में और हमारे वनों में हरियाली है। जब तक संसार में जल है, तब तक ही हमारे घर में, हमारे गांवों में, हमारे नगरों में, हमारे देश में और हमारे संसार में खुशहाली है। हमारी धरती पर जब तक पानी है, तब तक ही गीत है, संगीत है, नृत्य है और उत्सव है। लेकिन जल नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 16वीं शताब्दी में जल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कविवर रहीम दास जी ने ठीक ही कहा है, रहिमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, रहिमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
1: बिल्कुल सही कहा शशिकला द्विवेदी जी ने बहनों, जल है तो कल है, पानी है तो सब कुछ है। बहनों इसी वार्ता के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि दादी का बटुआ कर रहा है आपका इंतजार।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी सारी प्यारी बहनों का। बहनों, कहते हैं कि हमारी दादी और नानी के पास हर मौसम की एक छोटी सी पोटली होती थी, जिसमें सेहत के बड़े बड़े राज छुपे होते थे। ना कोई महंगी दवा, ना कोई बड़ी तैयारी, बस घर की रसोई में मौजूद चीज़ों से ही वे पूरे परिवार का ध्यान रख लेती थी। गर्मी के दिनों में भी दादी नानी हमेशा समझाती थी, बेटा धूप में खाली पेट मत निकलना, और घर से निकलो तो पानी पीकर ज़रूर निकलना। उनकी ये बातें आज भी उतनी ही काम की हैं जितनी की पहले थी। तो आइए बहनों, जानते हैं ऐसे ही आसान और घरेलू नुस्खे जो पीढ़ियों से हमारे घरों में अपनाए जाते हैं। सुबह एक गिलास सादा पानी या फिर नींबू पानी पीकर दिन की शुरुआत करें। घर से बाहर निकलने से पहले एक गिलास छाछ जरूर पी लें। दादी कहती थी छाछ पेट को भी ठंडक देता है और गर्मी को भी दूर रखता है। कच्चे आम का पाना गर्मियों का पुराना और भरोसेमंद साथी माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देता

करता है और लू से बचाने में भी मदद करता है। बेल का नाम तो आपने सुना ही होगा बहनों। बेल का शरबत भी गर्मी में बहुत लाभकारी माना जाता है। गाँव में आज भी लोग इसे गर्मी का प्राकृतिक पेय मानते हैं। प्याज को सलाद में शामिल ज़रूर करना चाहिए। कई घरों में बड़े बुजुर्ग गर्मियों में प्याज खाने की सलाह भी देते हैं। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, ये पानी वाले जितने भी भरपूर फल हैं, सब्जियां हैं, रोज़ खाने चाहिए बहनों। धूप से लौटकर तुरंत बर्फ़ जैसा ठंडा पानी पीने के बजाय थोड़ा आराम करके सामान्य पानी पीना चाहिए। और बहनों, दादी नानी का एक और अनमोल नुस्खा है, काम करो लेकिन अपने शरीर की भी सुनो। अगर थकान लगे, चक्कर आए या ज़्यादा पसीना आए तो थोड़ी देर आराम कर लें और पानी को ज़रूर पी लीजिए। तो बहनों, ये सब तो है ही, पर ये भी कहीं ना कहीं तो सत्य है कि हम बहनें जो है ना, काम में इतना लग जाते हैं कि अपना ध्यान ही नहीं रखते। बहनों, कहा है ना, यही उनका अनमोल नुस्खा है कि काम तो करिए लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, अपने शरीर की भी सुननी है बहनों। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, पता नहीं है कौन कब बीमार पड़ जाता है। ऐसे में आपका शरीर का ध्यान रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप दूसरों का ध्यान कैसे रखेंगी। तो बहनों, आप भी अपनाइए दादी और नानी के ये घरेलू नुस्खे, जिसमें छिपी है अनुभव की मिठास और सेहत का खजाना। चलिए आप बहनों, गर्मी में अगर एक गिलास ठंडक और ताजगी की तलाश हो तो रसोई में रखे कच्चे आम से बेहतर साथी क्या ही होगा। खट्टे मीठे स्वाद से भरपूर आम का पना न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि गर्मी के मौसम में तरावट का एहसास भी दिलाता है। तो आइए बहनों, आज हम सीखते हैं गर्मियों का खास पे कच्चे आम का पना, जो आपको स्वाद तो देता ही है, इसके साथ ही ये आपको लू से बचाने में भी मददगार होता है। तो जल्दी से ले आइए कॉपी और पेन और लिख लीजिए इसकी सामग्री। तो बहनों, कच्चे आम का पना बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कच्चे आम, 4 से बड़े चम्मच गुड़, चीनी या फिर खांड भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, 1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, चुटकी भर आपको चाहिए काला नमक, 4 से 5 पुदीने की पत्तियाँ, ठंडा या फिर सामान्य पानी या फिर आप घड़े का पानी भी इसमें ले सकती हैं ठंडा ठंडा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपके कच्चे आम हैं, कच्ची आमियाँ हैं, उनको धोकर छील कर आपको उसको उबाल लेना है। 1 या 2 सीटी में आपके आम उबल जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के रख दीजिएगा, जैसे कि हम आलू उबालते हैं। अब जब आपकी आमियाँ ठंडी हो जाए तो हाथ से मसल मसल के उसका गूदा आप निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, उस गूदे को एक छन्नी की मदद से, बड़ी वाली छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से पानी डाल के आप उसको छान लीजिए। अब उस गूदे में आप गुड़ डालिए, चीनी डालिए या फिर खांड डाल लीजिए और उसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। बहनों, ये आपके ऊपर है, आपको उसमें मिठास कितनी देनी है। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप कम मीठा डालिए, और आपको खट्टा ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा गुड़, खांड या चीनी भी डाल सकती हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पीस के वो डालना है, काला नमक डालिए और पुदीने की पत्तियों को हाथ से तोड़कर, या फिर आपने जो पुदीना सुखा के रखा होगा आप सूखा पुदीना भी इसमें डाल सकती हैं, पर अगर आप ताज़ा डालेंगी तो उसका स्वाद कहना ही क्या। और अपनी पसंद के अनुसार पानी मिलाकर घोल को तैयार कर लीजिए। तो लीजिए बहनों, तैयार है स्वादिष्ट और ताजगी से भरपूर कच्चे आम का पना। बहनों, एक खास बात कि ये जो आम का पना है ना, इसको दोपहर में ही पीना अच्छा रहता है। तो आप जब भी दोपहर का खाना खाइए और आम का पना लीजिए। अच्छा बहनों, एक चीज़ और, जैसे आम का तो सीज़न है ही है, हम पना बना रहे हैं, तो आप उसमें एक काम और कर सकती है, आम जो पीला वाला आम हम लोग खाते हैं उसके छोटे छोटे पीस काट के भी आप इस आम के पने में आप डाल सकती है, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो बहनों, दोपहर में आपने आम का पना भी ले लिया, ये शरीर को तरावट देता है, गर्मी में आपकी जो ऊर्जा है ना उसको बनाए रखता है, बच्चे और बड़े दोनों को ही इसका स्वाद पसंद आता है। तो बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आप
आम का पन्ना ज़रूर बनाएंगी और इस गर्मी में तो आप इसे ज़रूर पिएंगी और अपने घर में अपने बच्चों

वो भी पिलाएंगे। तो बहनों, जेठ की तपती दोपहरी हो, गर्म हवाओं के थपेड़े हो और मौसम अपनी पूरी गर्मी पर हो, तब भी हमारे जो लोकगीत है ना, वो जीवन में मिठास घोलने का ही काम करते हैं। ब्रजांचल के लोकगीतों में मौसम, रिश्तों और लोक जीवन की झलक बड़ी सहजता से देखने को मिलती है। तो इसी सहजता को, इसी चुटकीले मनभावन अंदाज को हम आपके सामने दिखाने जा रहे हैं अपने लोकगीत के माध्यम से, जिसमें गर्मी के मौसम का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए सुनते हैं भुवनेश कुमारी की आवाज़ में ये लोकगीत।

बहनों, इसी मनभावन लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पनघट। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गायी चंद गजलें। हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: to see the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislative Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीति

0: राजनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के

0: परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस

0: अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर 38,530 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का गायन। इसमें आज सुनिए आप राग भैरवी में ठुमरी।

आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गायन राग भैरवी में ठुमरी। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही देर में हम सुनेंगे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

भूले मिश्रे गीत कार्यक्रम आइए सुनते हैं, जिसका पहला गीत हमने लिया है फिल्म अनाड़ी से। आवाज है लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म अनाड़ी का वो गीत, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत हमने लिया है फिल्म श्री 420 से। आवाज लता मंगेशकर मन्ना डे की है, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत एक बार फिर से शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे बैजू बावरा फिल्म का वो गीत जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत था नौशाद का। बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने।

इसी गीत के साथ भोले बिस्तरे का गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी का आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।

इसी गीत के साथ भोले बिस्तरे का गीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी का आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गुंजन।

उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत। संगीत आनंदेव श्रवण का। फिल्म का नाम था बेवफा। अलका याग्निक और कुमार शाहरुख के युगल स्वर में सुनिए नवाब आरजू की रचना। संगीत है अनु मलिक और फिल्म का नाम है बाजीगर।

संघर्ष फिल्म में आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में समीर का लिखा गीत, संगीत था जतिन ललित का। श्रोताओं आइए सुनते हैं धूम फिल्म में सुनिधि चौहान की आवाज में समीर का ही लिखा गीत, संगीत है प्रीतम का।

विनोद राठौर और साधना सरगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे समीर का लिखा गीत। संगीत था आनंद मिलिंद का और फिल्म का नाम था हीरो नंबर 1।

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ गीत गुंजन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑनियर मोबाइल एप्लीकेशन पर इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सबसे पहले आप सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ

0: आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के नी वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से समाचार।

हमारे सभी श्रोता 5:10 पर आनंद ले सकेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का। 5:30 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी चर्चा गोवा दिवस और फूड प्रोसेसिंग पर। साथ ही आप सुनिएगा दिव्यांश अग्रवाल से स्वस्ति जैन की बातचीत। भेंट वार्ता का विषय होगा स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, जिंदा रहिए। और ताकत वतन की हमसे है, मैं आप सुनेंगे गुरु अर्जुन देव जी के बारे में।

शाम 6 बजे हमारे किसान भाई सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामे लोग, जिसमें चर्चा के विषय होंगे पीएम कुसुम योजना और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद्रमोहन सिंह से मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर वार्ता, लोकगीतों के साथ लीजिएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। सांझ 6:30 पर कार्यक्रम मजदूर मंडल में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा श्रमिक और डिजिटल साक्षरता। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता शौक और व्यवसाय फोटोग्राफी, वार्ताकार होंगे रणविजय सिंह।

7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा वार्ता सुविधा स्वाद और संस्कार का संगम है आलू। वार्ताकार होंगी साधना गुप्ता। साय 7:31 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश।

रैन 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो पत्रिका युवा भारती, और 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना आज के सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रेडियो की इस पावन तरंग पर आपका स्वागत है। श्रोताओं, आइए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए ईश्वर के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। इसी भाव के साथ हम आरंभ कर रहे हैं आज का सुर संध्या कार्यक्रम, जहां संगीत, भक्ति और शांति एक साथ

0: एआर रहमान के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के लिखे हुए भक्ति रचना को आप सुन रहे थे फिल्म जोधा अकबर से, आवाज थी बीला शिंदे की। आइए आप सुनते हैं अगली रचना, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम सुर संध्या में। आइए अब सुनते हैं फिल्म हल्ला बोल से ये भक्ति रचना, जिसे गाया है सुखविंदर सिंह ने और लिखा है समीर ने और संगीत दिया है सुखविंदर सिंह ने ही।

वाहिगुरु का नाम लेते ही हृदय में असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। वाहिगुरु जी की भक्ति में डूबा मन हर दुख और भय को भूल जाता है।

आप सुन रहे थे फिल्म कोराम से ये भक्ति रचना, आवाजें थी किशन पाल एवं साथियों की, जिसको लिखा था देव कोहली ने और संगीत था दिलीप सेन और समीर सेन का। इसी के साथ ये कार्यक्रम सुर संध्या यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार प्यारे व साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम युववाणी में, जहाँ हम करते हैं ढेर सारी बातें और खूब सारा मनोरंजन। 30 मई कैलेंडर का एक ऐसा पन्ना जो इतिहास की गहराइयों से लेकर आपकी रसोई की प्लेट तक एक अनोखी कहानी बुनता है। एक तरफ वो साल 1510 से शुरू हुआ संघर्ष जिसने एक खूबसूरत जमीन को गुलामी की कड़ियों में जकड़ा, और दूसरी तरफ जमीन के नीचे छुपा वो सोना जिसने दुनिया की भूख मिटाने का जिम्मा उठाया। सोचिए, पुर्तगाली जहाजों के लंगर ढालने से लेकर मैकडॉनल्ड्स के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तक क्या रिश्ता हो सकता है। इतिहास के समंदर से निकले जहाज और आज के सुपरमार्केट के पैकेट्स के बीच आखिर क्या कनेक्शन है। आज का दिन बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि आज है 30 मई और आज हमारे पास जश्न मनाने की एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह हैं। आज हम सफर करेंगे समंदर के सुनहरे किनारों से लेकर खेती की लहलाती हरियाली तक, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लाई हूं एक सवाल। तो बताइए साथियों, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? आप सोचिए सवाल का जवाब और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको जवाब देंगे कार्यक्रम के अंत में। दोस्तों, जब मैं गोवा शब्द कहती हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यकीनन खूबसूरत बीच, रिलैक्स लाइफस्टाइल और लेट नाइट पार्टीज। लेकिन आज इस खूबसूरत राज्य का एक बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज है गोवा राज्यत्व दिवस यानी गोवा स्टेटहुड डे। इतिहास की धरोहर से देखें तो साल 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को 450 साल के पुर्तगाली शासन से आज़ाद तो करा लिया था, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद गोवा को स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया गया, बल्कि गोवा दमन और द्वीप को मिलाकर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। फिर आया साल 1987, 30 मई के एक ऐतिहासिक दिन इस प्रशासनिक ढांचे को बदल गया। गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत के 25वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन तथा द्वीप को अलग करके एक स्वतंत्र केंद्र प्रशासित बना दिया गया। वैसे दोस्तों, गोवा की बात तो चली रही है, तो चलिए आपको एक मजेदार कनेक्शन भी बताती हूँ। तो ये जो आलू समोसे की जान है, चाट की शान है और आपके फ्राइज का राजा है ना, इसे भारत में उगाने की शुरुआत करने वाले भी वही पुर्तगाली ही थे। अरे हाँ भाई, वो इसे समंदर के रास्ते सबसे पहले गोवा ही लेकर आए थे, वरना उससे पहले हमारे देश के लोगों को क्या पता था कि आलू भी कोई चीज होती है। और आज का संयुक्त तो देखिए, आज यानी 30 मई को पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। है ना कितना कमाल और जादुई कनेक्शन। जिसे गोवा का आज जन्मदिन है, उसी ने सदियों पहले भारत को आलू का असली स्वाद चखाया था। आज संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन भी इस फसल के महत्व को सलाम कर रहा है। दोस्तों, आज के दौर में आलू सिर्फ एक आम सब्जी नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है। क्या आप एक चौंकाने वाला सच जानते हैं? दुनिया भर में जितने भी आलू उगाए जाते हैं, उनमें से 50% से भी कम आलू फ्रेश या सब्जी के रूप में खाए जाते हैं। जी हाँ, बाकी के आधे से ज़्यादा आलू खेतों से सीधे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आज फूड प्रोसेसिंग की वजह से आलू का रूप पूरी तरह बदल चुका है। अब भाई, जब बात आलू की हो रही है तो हम भारतीय भला कैसे पीछे छूट सकते हैं? पूरी दुनिया में सालाना 37 करोड़ टन से ज़्यादा आलू का बंपर उत्पादन होता है, और आपको जानकर गर्व होगा कि इस ग्लोबल रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है। पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, हमारे गांव देहात के खेतों की जो मिट्टी है ना, वो सोना उगलती है। यहाँ के किसान भाई सुबह सुबह हुक्का गुड़गुड़ा कर जो खेतों में फावड़ा लेकर उतरते हैं, उनकी दिन रात

की मेहनत का ही नतीजा है कि आज पूरा देश मजे से आलू चाट दबा दबा कर खा रहा है। यहाँ के कोल्ड स्टोरेज और लहलाते खेत देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हैं। दोस्तों, फूड सिक्योरिटी, रोजगार और आर्थिक तरक्की खेतों में काम करने वाले छोटे किसानों से लेकर जीरो वेस्टेज और सस्टेनेबिलिटी, पहले गांव के किसानों के सामने सबसे बड़ी आफत ये होती थी कि जो आलू के आकार में थोड़े टेढ़े मेढ़े, छोटे या काड़े रह जाते थे, उन्हें मंडियों में कोई पूछता भी नहीं था और वो खेत के कोने में पड़े पड़े सड़ जाते थे। लेकिन इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने खेल बदल दिया। अब ये कंपनियां उन अजीबोगरीब दिखने वाले आलूओं को भी अच्छे दामों पर खरीद लेती हैं और फैक्ट्रियों में धो पहुँच कर उनसे बेहतरीन क्वालिटी के चिप्स या फ्लेक्स बनाती हैं। इससे किसानों का नुकसान पूरी तरह बच जाता है और देश में अन्न की बर्बादी भी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की शाम जब आप अपने घर पर या किसी टपरी पर चाय के साथ समोसे का लुत्फ उठाएं, तो एक पल के लिए मुस्कुराकर हमारे देश और खासकर अपने गांव के उन मेहनती किसानों को दिल से थैंक यू जरूर बोलें, जो मिट्टी से ये सफ़ेद सोना उगाकर हमारी प्लेट तक खुशियां पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, उठाइए अपनी चम्मच और हो जाइए शुरू, क्योंकि जब सामने आलू की गर्मा गर्म चाट, टिक्की या भेलपुरी हो तो दिल तो अपने आप गुनगुनाने लगता है।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में और आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथ ही स्नेहा को। वैसे दोस्तों, गाना तो खैर क्या लाजवाब गाना था। इस गाने की मिठास और हमारे किसानों की मेहनत दोनों ही हमें जिंदगी की असली कीमत याद दिलाती है। इस आलू क्रांति और गोवा के जश्न के बीच मैं आपकी दोस्त बस यही कहूँगी कि खेतों से निकलने वाले इस कड़क और क्रिस्पी स्वाद की तरह अपनी लाइफ को भी हमेशा तरोताज़ा रखिए, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जीवन में हर दिन कुछ नया और बेहतर करने के लिए सक्रिय रहिए और हर एक पल को खुलकर जिंदा दिली से एंजॉय कीजिए, यानी जिंदा रहिए। आइए जानते हैं थोड़ा और एक भेंटवार्ता के द्वारा, जिसमें दिव्यांश अग्रवाल से बात की है स्वस्ति जैन ने।
6: दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांश अग्रवाल। स्वागत है दिव्यांश जी आपका।
7: जी धन्यवाद।
6: दिव्यांश, आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि स्वस्थ रहिए, सक्रिय रहिए, जिंदा रहिए। तो चलिए बात यहीं से शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपके हिसाब से स्वस्थ होना क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति की क्या सही परिभाषा है?
7: जी, मेरी नजरों में एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जो अपने शरीर के स्तर पर, अपने मन के स्तर पर, अपनी आत्मा के स्तर पर और अपने भावनाओं के स्तर पर 100% एक्टिव हो। इंसान का स्वास्थ्य इन्हीं चार पहलुओं के इर्द गिर्द घूमता है। अगर हम शरीर के स्तर पर स्वस्थ रहने की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति डेली बेसिस पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, कुछ सूर्य नमस्कार करे, कुछ एक्सरसाइज करे, रनिंग करे और किसी ना किसी रूप से वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज रखे। अगर मैं बात करूँ मन के स्तर पर तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक व्यक्ति डेली बेसिस पर अपने साथ कुछ वक्त बिताए, शांति में आँख बंद करके या फिर प्रकृति के बीच में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मन के स्तर पर हम अपने साथ ज़रूर समय बिताएं, क्योंकि शरीर से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मन। एक बार को अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप मन से स्वस्थ नहीं होगे तो फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तीसरा जो है वो है आत्मा के स्तर पर। एक व्यक्ति का आत्मा के स्तर पर स्वस्थ होना का अर्थ ये है कि किसी ना किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से वो ज़रूर जुड़ा हो, किसी योग साधना से, किसी भक्ति साधना से, उसके कोई गुरु हो या फिर कुछ भी। मतलब आत्मा एक ऐसी चीज है जो कि आपको दूसरे डायमेंशन का एक्सपीरियंस करा सकती है जो आपके नॉन फिजिकल होते हैं। इसके अलावा जो आपका चौथा जो आयाम है वो है भावनाओं के स्तर पर। देखिए, आजकल कितने सारे लोग हैं जो इमोशनली अनस्टेबल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अकेले रह रहे हैं और उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इमोशनल फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि

0: हम इमोशनल लेवल पर भी बैलेंस्ड हों, हमारे अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध हों और हम सबके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना के चलें, तो जो व्यक्ति इन चारों आयामों में स्वस्थ है वही सही मायनों में स्वस्थ है।
1: बहुत ही सही आपने पहलू बताए, चार पैरामीटर्स हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के, कि वो मन से भी स्वस्थ हो, शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो, आत्मिक तौर पर उसमें सुकून हो, और भावनात्मक तौर पर भी उसकी भावनाओं पर वो ध्यान रखता हो। ये बिल्कुल ठीक बात की आपने। जो यूथ का जो परसेप्शन है वो बहुत ही स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड है, हालांकि यूथ आजकल फिटनेस को लेकर कितना अवेयर है, सब लोग जिम जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो स्वस्थ नहीं है। आपके हिसाब से ये जो रिजल्ट्स हैं ये क्यों हैं? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रिजल्ट की तरफ हमें लेके जा रहे हैं?
0: देखिए, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं कुछ गिने चुने फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें से एक जो है वो है एकाकी जीवन। आजकल हम लोग अकेले पड़ गए हैं, जैसे बहुत से लोग बाहर जॉब करने जाते हैं तो वहां पर वो अकेले रहते हैं, तो उनके पास एक इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, माता पिता पीछे छूट जाते हैं, भाई बहन पीछे छूट जाते हैं, पैसा कमाने की दौड़ में हम अकेले हो जाते हैं बाहर जाके। इसके अलावा भी जैसे मान के चलिए कोई बाहर नहीं रह रहा है इन केस, तो भी फैमिलीज आज के टाइम में बहुत छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, मतलब आजकल जो है ना एक अकोमोडेट नहीं कर पाते हम दूसरों की फीलिंग्स को, है ना, लड़ाइयाँ होती हैं। अगर एक बड़े परिवार में आप देखेंगे, इससे बेहतर वो लोग सोचते हैं कि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, है ना। तो एक जो एकाकी जीवन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, सब अपने अपने में बिजी रहते हैं, देखिएगा आप डाइनिंग टेबल पर सब खाना खाते हैं, अपने अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो कि हमें नुकसान कर रहा है वो है आपका इरेगुलर लाइफस्टाइल, अनियमित लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं। हमारे ना सोने जागने का कुछ अता पता है, ना हमारे खाने पीने का अता पता है, हम क्या खा रहे हैं उसका भी अता पता नहीं है, और कब खा रहे हैं उसका भी अता पता नहीं है। मतलब जो इल हेल्थ होती है वो तो स्वाभाविक सा एक उसका साइड इफेक्ट है, फिर आप खराब स्वास्थ्य को खुद ही न्योता दे रहे हो अगर आप इस तरह से अपने लाइफ को रेगुलेट कर रहे हो। रात को 3 बजे तक जग रहे हो, सुबह 4 बजे चाय पी रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ये आपने देखा होगा कि सारे लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, हमारी दिनचर्या बिल्कुल अनियमित है। तीसरा पॉइंट जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो है आजकल का एक सोसाइटी का प्रेशर। हम बहुत ज़्यादा एक रेस में लगे हुए हैं, पैसा कमाने की, सेटल होने की रेस में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम और किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पैसा कमाने की दौड़ में सब इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि हेल्थ को बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते। अब तो हर कोई एक हसलिंग कल्चर जो जिसको कहते हैं हसलिंग कल्चर, जिसमें कि मतलब एक होड़ लगी रहती है, मतलब हमें सेटल होना है पैसे कमा के उसके बाद हम रिटायर होंगे। अरे तो भाई आप जिंदगी तो जियो, अभी जिंदगी तो आज जीने के लिए है ना, कल का कैसे पता है। आप अभी बाहर निकले और आपको भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर आप क्या करोगे उस पैसे का। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जिए कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, आप सोसाइटी के दबाव में नहीं आइए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप 4 लोगों की चिंता छोड़िए। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि हम सेटल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी जो एक शादी वाली एज होती है निकल जाती है, जैसे कि बहुत सारे यूथ जो होते हैं वो कहते हैं बाद में शादी करेंगे, लेकिन बाद में जब हम शादी करते हैं कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति को 22, 23, 24 साल की उम्र से एक पार्टनर की नीड महसूस होने लगती है, लेकिन वो शादी करता है 35 साल की उम्र में जाकर, वो उस दौरान जो बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जो अकेलापन होता है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट होता है, इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो मन से दुखी रहता है, तो ना वो सक्रिय रह पाता है, हेल्दी भी नहीं रह पाता है, और फिर वो जिंदा दिल भी नहीं रह पाता है, सबके चेहरे से लटक से जाते हैं, तो ये एक बड़ा दिक्कत का विषय है।
1: ये बात बिल्कुल ठीक है। जो ये इंडिविजुअलिस्टिक जो नेचर हो गया है ह्यूमंस का, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं, और उसमें बहुत जरूरी है कि हम अपने बड़ों से जुड़कर रहें, ताकि वो हमें समझाते भी हैं, हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे होते हैं तो वो उस पड़ाव से गुजर चुके होते हैं, तो उनके पास हमारे सवालों का बेहतर जवाब होता है। लेकिन हम क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक हो रहे हैं तो हम अपने इस इमोशनल फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, इसी वजह से हम फिर गलत आदतों की तरफ भी पड़ते हैं, जो फिर आगे जाकर भी हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए, कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं? कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हम ये जो रिजल्ट्स हैं इनको पूरी तरीके से ठीक तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बेहतर जरूर कर सकें?
0: स्वस्ती, मेरे हिसाब से जो सबसे पहली चीज एक व्यक्ति कर सकता है वो है अपना सोने और जागने का शेड्यूल फिक्स करना, एक पर्टिकुलर टाइम पर सोना और एक पर्टिकुलर टाइम पे जागने का। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो अनुशासन सबसे मेन है, स्लीप डिसिप्लिन, और नेक्स्ट इज फूड डिसिप्लिन। व्यक्ति जो है वो अपने खाने की आदतों में और अपने सोने की आदतों में डिसिप्लिन लेकर आए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मेरे हिसाब से एक जो पॉइंट है वो है योगा और मेडिटेशन और एक्सरसाइज। एक व्यक्ति डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करे, योगा करे, किसी न किसी फॉर्म में मेडिटेशन करे, प्राणायाम करे, एक अच्छे टीचर से सीख कर, एक योग गुरु से सीख कर वो योगा और मेडिटेशन को जरूर ट्राई करे, क्योंकि वो आपको जिस लेवल का फ्रीडम देती है, जिस लेवल की आपको शांति देती है, वो आपको कोई और चीज़ नहीं देगी। आप चाहे जिम में कितने भी पसीना बहा लीजिएगा, लेकिन अगर आप योग और प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अलग ही लेवल का उससे फायदा मिलेगा।

0: तीसरा मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो है एक इमोशनल कनेक्शन। देखिए आपके अंदर डेली बेसिस पर ढेर सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है ना, यू वॉन्ट दैट टू, आप उसको बाहर निकालना चाहते हो, तो यू शुड हैव समवन जिससे आप बात कर सको डेली बेसिस पर, कम्युनिकेट कर सको, बिकॉज इंसान एक सोशल एनिमल है, राइट। देखिए हर कोई इतना केपेबल नहीं होता कि चीज़ों को अपने अंदर तक रखे, किसी किसी को मतलब ये होता है कि हम किसी से बात करें कोई हमारी बात सुने, तो ऐसा भी नहीं है कि आप सामने वाले का मूड खराब कर दो, मतलब उसको अपने सारा उस पर दुख अपना उड़ेल दो, लेकिन फिर भी आप एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं डेली 15-20 मिनट। अपने लव्ड वन के साथ बातें करिए, अपनी माता पिता के साथ समय बिताइए, उनसे अगर आप बाहर रहते हैं तो कॉल पे बात करिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक पैशन अपना फॉलो करिए, किसी ना किसी एक साइड हसल पर अपने फोकस करिए जो भी आपकी है। अगर आप कुछ संगीत पसंद करते हो, पेंटिंग पसंद करते हो, तो आप उस पर थोड़ा सा काम करिए, वर्क करिए और उन चीज़ों के लिए टाइम निकालिए जो आपके लिए मायने रखती हैं।
1: ये जितनी भी बातें दिव्यांश आपने हमें बताई, ये केवल एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो कंट्रोलेबल फैक्टर है वो है पर्सपेक्टिव। हमें ज़रूरत है अपने नज़रिए में बदलाव लाने की। कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसको हमें टिक करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। ये बिल्कुल जाहिर है कि रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, तो उसके लिए काम करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी 24 घंटे में से हम कुछ समय तो ऐसा निकाल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मन की खुशी के लिए हो। अगर हम 24 घंटे में से एक घंटा भी अपने शारीरिक व्यायाम को नहीं दे सकते, तो फिर ऐसा जीवन पॉइंटलेस है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारे जो फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं या जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम होंगी। आपने जितनी भी बातें हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बहुत जरूरी है इन बातों पर बात होना, और आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांश। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।
0: जी धन्यवाद।
2: दोस्तों दिव्यांश से हमने ये तो जान लिया, लेकिन जब हम खुलकर जीने और सुरक्षित रहने की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है हमारे देश की सुरक्षा पर। आज हम अपने घरों में आराम से बैठे क्योंकि सरहद पर हमारी सेना दिन रात मुस्तैद है। तो चलिए अगले सेगमेंट आइए जानने में हम बात करते हैं हमारी सेना से जुड़े एक बहुत बड़े बदलाव। देश के युवाओं और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में CDS के पद के बारे में, क्या आप जानते हैं आजकल लड़ाई लड़ने का तरीका कितना बदल गया है? अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अकेले अलग अलग रहकर कोई बड़ी जंग नहीं जीत सकते। आज के दौर में जरूरत है इंटीग्रेटेड वॉरफेयर की, यानी हमारी तीनों सेनाएं मिलकर एक टीम की तरह एक ही प्लान पर काम करें। बस इसी तालमेल को मजबूत करने के लिए साल 2019 में सरकार ने CDS का एक नया पद बनाया। एक जिम्मेदार युवा होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि ये नया सिस्टम हमारी सेना को कैसे मजबूत कर रहा है। जब तीनों संस्थाएं मिलकर प्लानिंग करती हैं तो हथियारों की खरीद और फालतू का दोहराव एंड डुप्लीकेशन बचता है। इससे देश के रक्षा बजट का सही इस्तेमाल होता है और कम खर्च में हमारी सेना को सबसे मॉडर्न हथियार मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों हर बड़े बदलाव की तरह इस नए सिस्टम के सामने भी कुछ चुनौतियाँ हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे CDS के पास सीधे सेना को कमांड करने की पावर नहीं होती, उनका मुख्य काम सिर्फ सलाह, समन्वय और तालमेल बिठाना है। तो दोस्तों भले ही कुछ चुनौतियां हों, लेकिन ये नया पद भारत को डिफेंस के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। अब दोस्तों वक्त हो गया है आपको इस सप्ताह की कुछ खास खबरें बताने का जो शायद आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यूपी में DLED सत्र 2026 में प्रवेश पत्र के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसके अलावा नीट UG 2026 की परीक्षा के शुल्क वापसी के लिए NTA ने बैंक खाता अपडेट करने के लिए सीमा 22 जून तक बढ़ा दी है और सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि की है। अब दोस्तों ये थी आज की खबरें। अब इन गंभीर बातों को थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि भाई पिछले कुछ दिन से जो आफत की गर्मी पड़ रही थी ना उसे आखिरकार थोड़ी राहत मिली है। मौसम ने बहुत प्यारी करवट ली है, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, तो इस खुशनुमा माहौल में आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

दोस्तों, इस सुहाने मौसम और हवाओं के बीच अब बात करते हैं उन जाबाजों की जो हर मौसम में सरहद पर डटे हैं। और जब बात अटूट हौसले की हो तो आज हम याद कर रहे हैं सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को। उनका जीवन युवाओं को सिखाता है कि असली ताकत शांत रहकर हर मुश्किल का मुस्कुराकर सामना करने और हमेशा सच का साथ देने में है। और अब दोस्तों, वक्त हो गया है आपको सवाल का जवाब देने का जो हमने आपसे कार्यक्रम के शुरू में पूछा था। तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, अब जवाब के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तोता थी स्नेहा अग्रवाल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। अब वक्त है कार्यक्रम ग्रामीण लोक का।

श्रोताओं, आज के ग्राम्यलोक कार्यक्रम में मैं यशपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको हमारी राम राम। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी हर तरह की जानकारी, पशुपालन की बातें और हमारे लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में आपसे बात करेंगे जो हमारी खेती की लागत को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा से सिंचाई करने में हम किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। साथियों, देखा जाए तो

साथियों, आज हम ऐसी ही एक योजना के बारे में आपसे बात करेंगे जो हमारी खेती की लागत को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा से सिंचाई करने में हम किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। साथियों, देखा जाए तो खेती किसानी में सिंचाई पर आने वाली लागत हमारी खेती की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। हम लोग या तो बिजली के जरिए या फिर डीजल पंप सेट द्वारा सिंचाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लागत बढ़ना स्वाभाविक है। साथियों, कुछ ऐसा काम हो या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हमें ना तो बिजली का खर्चा उठाना पड़े और ना ही डीजल का खर्च उठाना पड़े तो कितना अच्छा हो। भाई, सूरज की किरणों से हम अपनी फसलों में पानी दे सकते हैं जिसमें कोई खर्चा ना होगा, तो हो जाएगा ना सोने पे सुहागा। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए हमारी सरकार ने पीएम कुसुम योजना शुरू की है। जी हाँ किसान साथियों, पीएम कुसुम योजना यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। किसान भाइयों, हमारी केंद्र सरकार की यह एक कल्याणकारी पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त करके और सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इसमें किसानों को सोलर पंप लगवाने पर किसानों को 90% तक की भारी सब्सिडी मिलती है। जी हाँ साथियों, किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए केवल 10% तक की राशि का ही भुगतान करना होता है, जबकि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करीब 90% तक सब्सिडी देती है। इन सोलर पंप सेट से किसानों को फसल की सिंचाई में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इसके अलावा किसान साथी अपने खेतों में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इससे वे अपनी ज़रूरतों की बिजली इस्तेमाल करने के बाद बची हुई बिजली को बिजली विभाग को बेचकर 25 वर्षों तक अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो भाई, सोलर सेट लगवाना या सोलर से संबंधित कोई भी काम करना क्या लाभ का सौदा। भाई, सोलर पंप से डीजल और बिजली पर निर्भरता तो खत्म होती ही है, साथ में प्रदूषण जो डीजल से होता है उससे भी पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहता है और साथ में सिंचाई भी हमारी सस्ती हो जाती है। भाई, हम किसानों को क्या चाहिए। फसल में अगर मुफ्त में सिंचाई हो रही है तो इससे बड़ा लाभ हम लोगों को क्या। भाई, सिंचाई पे हमारा सबसे अधिक पैसा खर्च होता है। और हाँ किसान भाइयों, इस कुसुम योजना के तहत जिन किसानों के पास पहले से ही बिजली से चलने वाले पंप हैं उन्हें सोलर पंप में बदलना भी शामिल है। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस योजना का लाभ कैसे लें, तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को राज्य सरकार के विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें आवेदन एवं पूर्ण जानकारी के लिए भारत सरकार का नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.mnre.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। एक बार और वेबसाइट का नाम सुने, www.mnre.gov.in पर इस योजना से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं, अथवा टोल फ्री नंबर 1800 180 3333 डायल करके भी इस योजना के बारे में हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंधित किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर आप एक बार और सुने, 1800 180 3333। किसान साथियों, पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप लगवाने पर कुल लागत का मात्र 10% से 40% तक ही किसानों को देना होता है। बाकी का 60% से 90% की भारी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। योजना के तहत पंप की क्षमता के हिसाब से खर्च और सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। जैसे कि अगर 2 हॉर्स पावर की क्षमता वाली सोलर पंप की अनुमानित लागत लगभग 1.5 लाख रुपये आती है, तो भाई इसमें करीब करीब 10% से 40% तक का हिस्सा सिर्फ किसानों को देना होता है, बाकी का 60% से 90% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। यानी 1.5 लाख में करीब 1,35,000 रुपये तक सरकार देती है और बाकी का 15,000 रुपये जो है वो किसानों को वहन करना पड़ता है। या फिर

0: दो हॉर्स पावर की पंप सेट लगाने में जब 1,80,000 रुपये तक का खर्चा आता है तो उस कंडीशन में 1,62,000 रुपये तक का सरकार देती है, बाकी का 18,000 रुपये खर्चा किसान को देना होता है। तो है ना भाई लाभकारी योजना। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लें और अपनी खेती बाड़ी में सिंचाई को बेहतर व्यवस्था में तब्दील करें और लाभ कमाएं। डीजल पर इससे निर्भरता भी कम होगी, साथ में पर्यावरण भी प्रदूषण मुक्त रहेगा। इससे आपको आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ में जो हम पर्यावरण के लिए सहायता कर रहे हैं वो भी तो एक फायदा ही है। किसान साथियों, खेतों पर सोलर पंप सेट लगवाने और इससे लाभ कमाएं, यह आपको कृषि में तो बहुत बेहतरीन लाभ देता ही है, साथ में हम पर्यावरण की दृष्टि से भी अपने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता करते हैं। आपके साथ हम अपने कार्यक्रम को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक विराम ले लेते हैं और मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे राहुल, ये झूठ का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, झूठ के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: किसान साथियों, आज 30 मई है और आज के दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रोताओं, आलू दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, लेकिन यह फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील है। पूरे विश्व में आलू की 5,000 से भी ज़्यादा किस्में हैं और इसकी फसल 159 देशों में की जाती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर विभिन्न कृषि फसलों में आलू की फसल एक मुख्य फसल है और हमारा देश भारत दुनिया में आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसान भाइयों, यह जानकर आपको खुशी होगी कि हमारे आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया है। भाइयों, आलू की फसल 8,000 वर्षों से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आज के समय में गर्मी, सूखा और अनियमित बारिश इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। साथियों, आपको बता दें कि आलू का उपयोग अब केवल भोजन तक सीमित नहीं है, आलू के स्टार्च से अब बायोप्लास्टिक बनाया जा रहा है जो पारंपरिक प्लास्टिक का एक बेहतरीन और टिकाऊ विकल्प है। इसका उपयोग फूड कंटेनर और दवा के कैप्सूल बनाने में किया जा रहा है। चूँकि यह पर्यावरण के अनुकूल और ग्लूटेन मुक्त होता है, इसीलिए भविष्य के उद्योगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि भाई, अनेक उपयोगों के साथ आलू एक बेहतरीन व्यावसायिक फसल है। किसान साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर हम यही कहेंगे कि भूख और गरीबी से लड़ने तथा कृषि खाद्य प्रणालियों के पर्यावरणीय खतरों से निपटने में आलू की फसल के महत्व को समझना होगा। साथ में आलू की खेती करने वाले सभी किसानों, खासकर छोटे पारिवारिक किसानों की भूमिका समझते हुए उनका ध्यान रखना होगा और उनकी आय बढ़े इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी है। किसान और उपभोक्ता के बीच की कड़ी को और पारदर्शी एवं किसान हित में बनाने की आवश्यकता है, तभी आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस का सही मायने में सफल मान सकते हैं। आपके साथ अपने कार्यक्रम को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले गर्मी के इस मौसम में भले ही एक दो दिन की भाई बरसात हो गई है, थोड़ी राहत दे दियो, लेकिन मौसम तो गर्मी का है, तो इस भीषण गर्मी में आइए आनंद लेते हैं महावीर सिंह चाहर द्वारा गाए इस लोकगीत का।

श्रोताओ, आज के इस आधुनिक युग में सभी क्षेत्रों में नई खोज एवं नई तकनीकी का उपयोग करके बहुत तरक्की की जा रही है। इसका असर हमारी कृषि एवं ग्रामीण जीवन में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, हाल के वर्षों में फसलों के लिए नई कीटनाशकों की खोज हुई है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल, कम जहरीले और कीटों और रोगों पर अधिक प्रभावशाली तरीके से असर करने वाले कीटनाशक। कीटनाशकों की कुछ नई और प्रमुख खोजों पर बात करते हैं आज हम, जैसे कि नैनो कीटनाशक। इन कीटनाशकों में ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे कीटनाशक पौधों की पत्तियों पर मजबूती से चिपक जाते हैं। ये नैनो कीटनाशक न केवल कीटों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि बारिश से धुलते भी नहीं हैं, जिससे किसान कम मात्रा में भी उपयोग करके बेहतर परिणाम ले सकते हैं। ऐसे ही एक कीटनाशक की खोज हुई है, वो है माइक्रोबियल कीटनाशक। ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस का उपयोग करके विकसित किए जाते हैं। ये केवल लक्षित कीटों पर असर करते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जी हाँ किसान साथियों, अगर हमारी फसल में कोई ऐसा कीट है जिस पर कि कोई फंगस या फिर वायरस उस पर असर करके उसे मार सकता है, तो उसको हम अपने कीटनाशक में उपयोग करके उन कीटों को मार सकते हैं। नई खोज में नीम और जैविक कीटनाशक बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नीम और लहसुन के अर्क को अधिक प्रभावशाली बना करके बनाए जाते हैं। किसान साथियों, ये घरेलू कीटनाशक एप्सम साल्ट और नीम के तेल से बनते हैं, जो कीटों को सुखाकर मार देते हैं। साथियों, जैविक और जो नीम कीटनाशक हैं, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे पर्यावरण को रसायनों से मुक्त करने में सहायता करें। इसके अलावा कृषि मशीनरी भी, यंत्र भी नई खोजों से हमारी खेती किसानी को बहुत लाभ दे रहे हैं, जैसे कि ड्रोन तकनीक। ड्रोन का उपयोग अब कीटनाशकों और उर्वरकों के सटीक छिड़काव के लिए किया जाता रहा है, जिससे समय और लागत दोनों में बचत होती है।

0: इसके अलावा ऑटोनोमस ट्रैक्टर, ये AI आधारित ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के GPS का उपयोग करके खेत में जुताई, बुवाई और कटाई का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिससे मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। ठीक ऐसे ही कृषि रोबोट का उपयोग फल तोड़ने, खरपतवार हटाने और फसलों की निगरानी रखने के लिए किया जाता रहा है। श्रोताओं, आज के समय में कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति आई है, जिससे खेती की लागत और मेहनत दोनों बहुत कम हुई है, तो इसका आप भी लाभ उठाएं और कृषि को बेहतर बनाएं। किसान साथियों, आज की इस बढ़ती जनसंख्या के दौर में खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए खेतों से अधिक पैदावार लेने के चक्कर में हम रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं, जिससे खेत की मिट्टी का जो उपजाऊ शक्ति है वो तो बहुत कम होती ही जा रही है, साथ में जो कृषि उत्पाद मिलते हैं वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए हमें अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराकर जिस तत्व की कमी हो वही उसमें मिलाएं तो हम उसके बेहतर परिणाम ले सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं। तो किसान साथियों, आज की हमारी वार्ता में चंद्रभान सिंह आपको मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं यह वार्ता।
1: किसान भाइयों, विकसित कृषि के लिए मृदा परीक्षण पहली आवश्यकता है। कृषि में मृदा परीक्षण या मिट्टी की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना तथा यह पता करना है कि उस भूमि में कौन से तत्वों की कमी है। अब बात आती है मृदा परीक्षण क्यों। मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधा खड़े रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, पौधे वायु एवं जल से तथा 13 तत्वों को पौधे भूमि से रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरकों से ग्रहण करते हैं। इनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश प्रमुख पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यधिक मात्रा में होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर अपेक्षाकृत कुछ कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम एवं क्लोरीन पोषक तत्वों की भी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों का मृदा में संतुलित रूप से उपलब्ध रहना आवश्यक है। किसान भाइयों, यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति ना की जाए तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक यही दशा हमारे मृदा की है। लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का वास भी बढ़ रहा है, परंतु रासायनिक उर्वरकों व खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति छीण होती जा रही है। अब बात आती है कि मृदा परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल व किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना है कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें। मृदा में लवणता या क्षारीयता व अम्लीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश

0: कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान करना है। फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना। मृदा परीक्षण के लिए सबसे पहले मृदा का नमूना लिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि मृदा का नमूना इस प्रकार लें कि वह पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। मृदा नमूना खरीफ, रबी व जायद फसलों की बुआई के पूर्व लेना चाहिए। मृदा नमूना लेने की विधि। जिस भूमि क्षेत्र का नमूना लेना हो उस क्षेत्र पर 5-6 जगहों पर निशान लगा लें। चुनी गई जगह की ऊपरी सतह पर यदि कूड़ा करकट या घास इत्यादि हो तो उसे हटा दें। उसके बाद खुरपी की सहायता से ऊपर से लेकर 15 सेंटीमीटर गहराई तक वी आकार का गड्ढा बना लें और उसमें से मिट्टी को निकालकर साफ कर लें। खुरपी से उस गड्ढे की दीवारों से लगभग 2.5 सेंटीमीटर परत ऊपर से नीचे की तरफ खुरच लें। खेत के विभिन्न स्थानों से एकत्रित मिट्टी को किसी साफ कपड़े या साफ बर्तन में डालकर खूब अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे 4 भागों में बांट दें। इस 4 भाग के आमने सामने के 2 भाग लेकर अन्य 2 भागों की मिट्टी को फेंक दें। यह क्रिया तब तक दोहराएं जब तक 0.5 किलोग्राम मिट्टी शेष रह जाए। यह मिट्टी खेत विशेष की मिट्टी का प्रतिनिधि नमूना है। इस 0.5 किलोग्राम मिट्टी को परीक्षण हेतु कपड़े की थैली में भर दें। यदि मिट्टी गीली हो तो हमारे किसान भाई इस नमूने को छाया में सुखाकर उसके बाद थैली में भरें। अब इसके बाद में 2 टैग लेबल लें। उस पर कृषक का नाम, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, विकासखंड का नाम, तहसील का नाम व जनपद का नाम अवश्य लिखें। 1 टैग थैली के अंदर एवं 1 थैली के ऊपर बांधें। मृदा नमूना भेजते समय यह भी अंकित करना आवश्यक है कि खेत में कौन सी फसल ली जानी है, ताकि उसी के अनुसार उर्वरक की संतुति की जा सके।
1: श्रोताओ, अभी आपने हमारी वार्ता में चंद्रभान सिंह से मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर जानकारी ली। और आइए अब हम आपको बताते हैं आज और कल के मौसम के बारे में। आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओ, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए आपका संगीत में मनोरंजन करवाते हैं और आनंद लेते हैं इस गर्मी के मौसम में मिथिलेश जी द्वारा गाए हुए इस लोकगीत का।

यशपाल सिंह से आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

स्वागत है सभी श्रमिक साथियों का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। सभी श्रमिक भाई बहनों को आरती चक्रवर्ती का नमस्कार। साथियों, गर्मी का प्रकोप तो हम सभी देख रहे हैं। ये गर्मी कम करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस गर्मी में अपना ध्यान रखना ज़रूर हमारे हाथ में है। देखिए, काम करना ज़रूरी है, पर अगर सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका सीधा असर हमारे काम पर पड़ेगा। इसलिए साथियों, बाहर धूप में काम करते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें, काम के बीच बीच में पानी पीते रहें और लगातार ज़्यादा देर तक धूप में काम ना करें। साथ ही ताज़ा, हल्का और पौष्टिक भोजन करें और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा, क्योंकि आपको

गर्मी से बचाने के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे भी लेके आई हूँ। पर साथियों, अभी हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे रोज़मर्रा के कामों से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में श्रमिक भाई बहनों का डिजिटल साक्षर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और दोस्तों, डिजिटल साक्षरता का मतलब है मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करना, जैसे ऑनलाइन पैसे भेजना, बैंक खाते की जानकारी देखना, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना, ई श्रम कार्ड बनवाना और रोज़गार की जानकारी प्राप्त करना। पहले जहां छोटी छोटी जानकारी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब मोबाइल के माध्यम से कई काम हम घर बैठे ही कर लेते हैं। आज लगभग हर सरकारी योजना ऑनलाइन हो चुकी है। ऐसे में अगर हमारे श्रमिक साथी डिजिटल रूप से जागरूक होंगे तो वो अपने अधिकारों और सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। और साथियों, डिजिटल साक्षरता के कई सारे फायदे हैं। ये हमारे समय को बचाता है। अगर हमें कोई जानकारी चाहिए तो आज हम लोगों से नहीं पूछते, दफ्तरों में जाकर जानकारी नहीं लेते, बल्कि अपने मोबाइल पर जानकारी ढूंढते हैं। और न सिर्फ जानकारी, हम तो यहाँ रास्ते भी ढूंढ लेते हैं। साथ ही डिजिटल भुगतान और बैंकिंग से मजदूरी सीधे खाते में आती है और पैसे सुरक्षित रहते हैं। अगर हमारे श्रमिक साथी जागरूक होंगे तो वो ऑनलाइन ठगी से बच सकेंगे। और ऑनलाइन प्रशिक्षण और नौकरी की जानकारी से श्रमिक अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और बेहतर रोज़गार पा सकते हैं। डिजिटल साक्षरता से श्रमिक केवल तकनीक नहीं सीखते, बल्कि अपने अधिकारों की ताकत को भी पहचानते हैं। और तकनीक से जुड़कर श्रमिक वर्ग अपने भविष्य को और मजबूत बना सकता है। पर दोस्तों, साथ ही हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि अपना OTP या पिन किसी को ना बताएं, बैंक की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और भरोसेमंद ऐप और वेबसाइट का ही उपयोग करें। इसका मतलब हमें डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन पूरी सावधानी और समझदारी के साथ। साथियों, वक्त हो चला है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भारत में UPI की शुरुआत कब हुई थी? एक बार ध्यान से सुनिए, आज का प्रश्न है, भारत में UPI की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर जानने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा।

साथियों, ज्ञान सागर सेगमेंट में आज हम जानने जा रहे हैं देश की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। चलिए समझते हैं कि RBI क्या है और इसका काम क्या है। दोस्तों, RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। RBI देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करता है। RBI के कुछ मुख्य काम जैसे देश में नोट जारी करना, बैंकों को नियंत्रित करना, ब्याज दरों को तय करना और देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। और साथियों, RBI केवल बैंकों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो या हो श्रमिक। सभी का पैसा बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा होता है। नोटबंदी के बाद

0: डिजिटल भुगतान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। UPI, मोबाइल बैंकिंग और कार्ड पेमेंट्स जैसी सेवाओं को सुरक्षित बनाने के लिए RBI नियम बनाता है और साथ ही उसकी निगरानी भी करता है। जैसे हमारे श्रमिक साथी देश की रीढ़ हैं, वैसे ही RBI देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये हमारी बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित, मजबूत और पारदर्शी बनाता है। इसलिए हमें बैंकिंग और डिजिटल जानकारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित बैंकिंग ही मजबूत देश की पहचान है। वैसे साथियों, आप लोगों को आज का प्रश्न तो याद है ना? आज का प्रश्न था, भारत में UPI की शुरुआत कब हुई? साथियों, भारत में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को हुई थी। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने लॉन्च किया और बाद में 25 अगस्त 2016 से इसे आम जनता के उपयोग के लिए पूरी तरह से उपलब्ध कराया गया। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI को विकसित किया। मैं आशा करती हूँ कि आज ज्ञान सागर सेगमेंट में RBI और UPI से संबंधित दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फ़ोन के बिना हमारा जीवन अधूरा सा है। एक छोटे से फ़ोन से हम दुनिया भर की खबर चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। परिवार और दोस्तों से बात करनी हो तो दूर दराज बैठे उन्हें फ़ोन कर लेते हैं। उन्हें देखने का मन किया तो वीडियो कॉल कर लेते हैं। ज़रूरत का सामान मंगवाना है तो फ़ोन से ऑर्डर कर लेते हैं। किसी को पैसे भेजने हैं तो बिना घर से निकले, बिना बैंक या डाकघर गए, फ़ोन से मनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और तो और, मौसम की जानकारी, रास्तों का पता, मनोरंजन और ना जाने कितनी ही चीज़ें हम अपने फ़ोन से कर लेते हैं। साथियों, मोबाइल फ़ोन ने कैमरे के ज़रिए फ़ोटोग्राफी को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। कई लोग इसे अपने शौक के रूप में अपनाते हैं तो कुछ युवाओं ने इसे व्यवसाय का रूप देकर रोज़गार का साधन बना लिया है। और इसी विषय पर आधारित है हमारी अगली वार्ता, शौक और व्यवसाय फोटोग्राफी। वार्ताकार हैं रणविजय सिंह।
1: अगर व्यक्ति के मन में कुछ नया करने की ललक, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का हुनर, लोगों की पसंद जानने की कला, मेहनत तथा चुनौतियों से न घबराने की प्रवृत्ति, व्यवहार कुशलता, ईमानदारी, वफादारी तथा अनुशासन में रहने की मानसिकता हो तो फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। साथ ही आप अपनी कर्मठता तथा निराली प्रवृत्ति के आधार पर आप अपने नाम का अवार्ड हासिल कर सकते हैं। हालांकि फोटोग्राफी एक खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन इसका एक विस्तृत क्षेत्र भी है। अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें और परिस्थितियां आपको सहयोग करें तो फोटोग्राफी एक निराला कैरियर है जहां पैसा और पहचान दोनों ही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत सी ऐसी स्मृतियां होती हैं जो व्यक्ति को याद न आकर रोमांचित करती रहती हैं। इन यादों को जीवंत बनाने में सहयोग देते हैं फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स को सहेजना व खींचना भी एक कला है। फोटोग्राफ्स की अपनी एक भावव्यक्ति होती है, चाहे व्यक्ति की एल्बम में लगे फ़ोटो हों या फिर पत्र पत्रिकाओं में छपे फोटोग्राफ्स, दोनों ही नीरस जीवन को सरस बनाने का कार्य करते हैं। एक नीरस लेख को पाठकों की पसंद का आईना बनाने में फोटोग्राफर का एक विशेष स्थान होता है। कुछ समय पहले तक फोटोग्राफी को मात्र शौक का ही माध्यम समझा जाता था, लेकिन धीरे धीरे बदलते सामाजिक परिदृश्य तथा मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने फोटोग्राफी को एक कैरियर के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। तकनीकी और कला के उत्कृष्ट समन्वय का नमूना फोटोग्राफी है। हालांकि पल भर की कलात्मक कारीगरी है, लेकिन इसका प्रभाव दूर तक तथा देर तक रहता है। फोटोग्राफी का सबसे उत्कृष्ट नमूना उस फोटोग्राफ्स को माना जाता है जो बिना कुछ लिखे ही लोगों तक अपना पूरा संदेश पहुंचा दे। सुंदरता जिसका विशेष गुण हो तथा वास्तविकता स्थिति का व्यक्ति को मात्र फोटो देखने से ही अंदाजा हो जाए कि वह स्थिति जिसका फोटो खींचा गया है गतिशील थी या गतिहीन। तेजी से बदलते आज के परिवेश में फोटो

0: फोटोग्राफी अपना अहम स्थान रखती है। फोटोग्राफ्स के अभाव में आज कोई भी काम अधूरा सा समझा जाता है। विवाह समारोह हो, बर्थडे फंक्शन हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या पब्लिक मीटिंग, राजनीतिक गोष्ठियाँ, बौद्धिक सेमिनार, प्रेस कवरेज अथवा सर्जरी अध्यापन, सभी जगह और सभी मौक़ों पर फोटोग्राफी अपने महत्व का डंका बजवाती रही है। फोटोग्राफी का आविष्कार यूं तो पश्चिमी देशों में हुआ है, लेकिन आज दुनिया के प्रत्येक देश में इसकी लोकप्रियता है। लोकप्रियता का ही आलम है कि इसे कि कैमरे से मोबाइल के सफर में आज सेल्फी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। फोटोग्राफी के प्रति नई पीढ़ी का आकर्षण इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में रोमांच और ग्लैमर के साथ साथ काफ़ी धनार्जन भी किया जा सकता है। सौंदर्य प्रतियोगिताएं तथा फैशन शो में कामयाबी का पहला चरण फोटोग्राफी ही है। मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया तथा मिस वर्ल्ड बनने के लिए पहले मिस फोटोजेनिक के रूप में सफल होना होता है। फोटोग्राफी की बदौलत ही व्यक्ति का आकर्षण कई गुणा बढ़ाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सौंदर्य का हल्ला मचाने वाले रूपसियाँ यदि सौ सौ नखरों व हजारों अदाओं वाली होती हैं तो उनके मनपसंद फोटोग्राफरों के नाज नखरे भी कुछ कम नहीं होते, क्योंकि विश्व स्तर उनके व्यक्तित्व को चमकाने में फोटोग्राफर्स का भी कम योगदान नहीं होता है। फोटोग्राफ्स घटनाओं की भाषा है, परंतु उस फोटोग्राफ्स को किसी घटना का आईना तभी माना जा सकता है जबकि वह प्रभावी, आकर्षक, ज्ञानवर्धक तथा प्रासंगिक हो और लोगों के जहन में अपनी अमिट छाप छोड़े। इसके लिए फोटोग्राफर को वातावरण तथा कैमरे से संबंधित पूर्ण जानकारी होनी आवश्यक है। साथ ही दर्शक की मन स्थिति तथा घटना की परिस्थितियों का जानकार फोटोग्राफर सर्वप्रिय तथा हमेशा सुर्खियों में रहता है। भौतिकवादी युग में उत्पादन के बढ़ते दायरे ने घर घर में कैमरा पहुंचा दिया है। हर हाथ में कैमरा है, पर जरूरी नहीं है कि वह कैमरे का जानकार हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विषय के अनुरूप खींचा गया फोटोग्राफ न केवल दिखने वाले को आकर्षित करता है वरन फोटोग्राफर की सोच तथा मानसिकता को भी दर्शाता है। वर्तमान समय में फोटोग्राफी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया है, चाहे खेल का मैदान हो या फिर व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, हर जगह फोटोग्राफी का दखल है। यही कारण है कि आज फोटोग्राफी को करियर के रूप में अपनाना शान का प्रतीक माना जाता है। फोटोग्राफी किसी बेजान चीज को भी जीवंत रूप में लोगों के कौतूहल को जगाने तथा शांत करने का कार्य करती है।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता शौक और व्यवसाय फोटोग्राफी। वार्ताकार थे रणविजय सिंह। साथियों, अब समय है सेगमेंट नई खोज का, जिसमें हम आपको विज्ञान और तकनीक की दुनिया की नई जानकारियों से परिचित कराते हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसे ऑर्गन ऑन चिप कहा जा रहा है। ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल होता है जो मानव शरीर के अंगों जैसे हृदय, फेफड़े या लीवर के काम करने के तरीके की नकल करता है। अब तक नई दवाइयों का परीक्षण कई बार पशुओं पर किया जा रहा था, लेकिन इस तकनीक में की मदद से वैज्ञानिक बिना पशुओं पर परीक्षण किए दवाओं का अध्ययन कर सकेंगे, जिससे शोध कार्य ज़्यादा सुरक्षित, तेज और प्रभावी बनेगा। इस तकनीक ने नई दवाइयों विकसित करने में कम समय लगेगा। दवाओं के प्रभाव और दुष्प्रभाव को पहले से ही बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। पशुओं पर होने वाले परीक्षण कम होंगे, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान अधिक मानवीय दिशा में आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कैंसर, हृदय रोग और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज खोजने में इस तकनीक से बहुत मदद मिलेगी। साथ ही इससे चिकित्सा क्षेत्र में नई नौकरियों और शोध के अवसर बढ़ सकते हैं। तो साथियों, विज्ञान की ऐसी नई खोजें आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। साथियों, जब लोग मई जून की तेज़ गर्मी में दिन के समय घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, उस समय हमारे मजदूर भाई बहन तपती धूप में अपने पसीने से मेहनत की ऐसी मिसाल लिख रहे होते हैं जिससे शहरों की

इमारतें खड़ी होती हैं, लोगों को अपने सपनों का घर मिलता है, सड़कें बनती हैं। जलती धूप और थकान के बावजूद हमारे कदम नहीं रुकते, क्योंकि हमारे श्रम में ही हमारे परिवार के सपने और आने वाले कल की उम्मीद जुड़ी है। और ऐसे में अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका असर हमारी जेब के साथ हमारे भविष्य पर भी पड़ेगा। साथियों, गर्मी का मौसम है तो ऐसे में जो साथी धूप में काम करते हैं उनके लिए आम पन्ना एक बहुत ही उपयोगी और प्राकृतिक पेय है। आम पन्ना कच्चे आम से बनता है और ये हमारे शरीर को ठंडा रखता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर में पानी की कमी को रोकने में मदद करते हैं और लू लगने से बचाते हैं। साथ ही कच्चे आम में मौजूद फाइबर और पुदीने जीरे के पाचक गुण पेट में गैस, अपच और कब्ज की समस्या से राहत देते हैं। आम पन्ना से भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत कर मौसमी बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसलिए आप सभी आम पन्ना को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। आप इसे घर पर आसानी से कच्चे आम, चीनी या गुड़, काला नमक और भुने हुए जीरे पाउडर से बना सकते हैं।

साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी आरती चक्रवर्ती को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल, प्रस्तुत करता थी आरती चक्रवर्ती। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे

योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे

0: लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sauda has elected D.K. Shivakumar as their new leader after the resignation of Siddaramaiah. In this regard, the legislators adopted the resolution put forward by Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. A press release issued by D.K. Shivakumar's office confirmed that the legislators have elected him as their leader and the next chief minister. After adopting the resolution to elect Mr. Shivakumar as the leader, the message was officially announced to all the Congress legislators by AICC General Secretary K.C. Venugopal in the meeting. Briefing the media persons later in Bengaluru, Mr. Venugopal announced that D.K. Shivakumar was elected unanimously by the party legislators and he will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd June. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today said that the Khet Bachao Abhiyan should be made a comprehensive national campaign connecting farms, farmers and villages. The minister said this while chairing a high-level meeting regarding the preparations of the Khet Bachao Abhiyan in New Delhi. During the meeting, he said that the focus of the campaign

खराब भी नहीं होता। आप इसे हफ्तों तक बिना फ्रिज के भी सुरक्षित रख सकते हैं। संकट के समय जब घर में कोई सब्जी ना हो तब आलू ही हमारा संकट मोचन बनकर सामने आता है। और आलू की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन भी तो है, क्योंकि ये हर सब्जी जैसे कि गोभी, मटर, बैंगन सबके साथ घुल मिल जाता है, जैसे हमेशा से उसी का हिस्सा रहा हो। इसके पीछे एक और कारण है, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति चाहता है कि खाना जल्दी बने, स्वादिष्ट बने और सबको पसंद भी आए। तो ऐसे समय में सबसे पहले जो चीज हमें याद आती है वो है आलू। आलू सबसे आसान और भरोसेमंद विकल्प बनकर हमारे सामने आता है। इसे उबालना आसान है, पकाना आसान है और लगभग हर सब्जी के साथ इसे मिलाकर हम बना लेते हैं। यदि घर में कोई दूसरा विकल्प ना हो तो आलू से भी स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। यानी आलू हमें यह सिखाता है कि जीवन में ऐसे बनो कि हर परिस्थिति में ढल सको। और तो और आलू की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि यह हर मौसम में उपलब्ध रहता है और इसकी कीमत सामान्य लोगों की पहुंच में होती है। यही कारण है गरीब और अमीर परिवार तक हर घर में आलू का उपयोग होता है। चाहे सुबह नाश्ता हो, दोपहर का भोजन हो, रात का खाना हो, आलू तो हर समय काम आता है। तो अब बात हम स्वाद की करते हैं। आलू का स्वाद इतना सरल और मनभावन होता है कि यह हर व्यंजन में आसानी से घुल मिल जाता है। आलू समोसा हो, आलू टिक्की हो, पराठा हो या फिर तले हुए आलू की गर्मा गर्म चाट की तो बात ही निराली है, या चटपटे दम आलू और सबकी पसंद पत्तल वाली आलू की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी, वो तो मन भावन लगती हैं। हर व्यंजन में आलू अपनी एक अलग ही पहचान बनाता है। बच्चों को फ्रेंच फ्राइज और चीज बोल्स बहुत पसंद हैं, तो युवाओं को आलू की टिक्की, आलू पैटीज और बुजुर्गों को भंडारे वाली आलू की सब्जी और सबसे फेवरेट मठा के आलू, वो तो अति प्रिय हैं। भारतीय रसोई में आलू का स्थान बहुत विशेष है। हर राज्य में अपनी अलग पहचान बना रखी है इसने। जैसे उत्तर भारत में पूरी आलू की सब्जी, बिहार का आलू चोखा, महाराष्ट्र में वड़ा पाव, बंगाल का आलू पोस्तो और दक्षिण भारत का मसाला डोसा, पूरे भारत में हर जगह छाया हुआ है। हर व्यंजन का अपना अलग स्वाद है और हर बार उसे कुछ खास ही महसूस कराता है। आलू की एक अच्छी बात यह भी है कि आलू केवल स्वाद ही नहीं देता बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो भरपूर मात्रा में है जो शरीर को ताकत दे रहा है, साथ ही इसमें विटामिन सी, B6, पोटेशियम और फाइबर भी पाए जाते हैं। यदि हम इसे सही मात्रा में और सही तरीके से खाएं तो यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होता है। आलू का अपना कोई बहुत तीखा या कोई विशिष्ट स्वाद नहीं होता और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वाद के बाद अब बात हम थोड़ी संस्कारों की भी करेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कारों में भोजन केवल एक स्वाद नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन भी होता है। जब घर पर कोई अतिथि आता है तो उसे खिलाने में जो आत्मीयता होती है उसे आलू अक्सर अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। अब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका से आया ये कंद हमारे संस्कारों में इस कदर रच बस जाएगा। आज आलू हमारी सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक सभी परंपराओं का अहम हिस्सा बन गया है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार हो, शिवरात्रि हो, एकादशी हो, ऐसे व्रतों में अन्न का त्याग किया जाता है। ऐसे समय में फलाहार के रूप में आलू सबसे प्रमुख आधार बना हुआ है। आलू का हलवा, कुटू की पूड़ी के साथ आलू की सब्जी या साबुदाने की खिचड़ी, इन सब में आलू का होना तो अनिवार्य है। बचपन की यादों को टटोलें तो स्कूल में टिफिन में पूरी आलू की सब्जी माँ के प्यार का सबसे पहला स्वाद होती थी। और सफर पर जाना हो उसमें तो आज भी लोग रास्ते के लिए आलू पूरी ही पैक कराना पसंद करते हैं। यह हमारी सामूहिक स्मृतियों और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जब भी घर में कोई शुभ अवसर होता है तो उस बनने वाले भोजन में आलू तो अवश्य ही होता है, चाहे वो विवाह हो, समारोह हो, कोई भी धार्मिक व्रत हो, अनुष्ठान हो या परिवार का कोई उत्सव हो, आलू की अपनी एक खास जगह होती है। अब जब इतना कुछ हमने जाना है तो थोड़ी सी रोचक बातें भी जान लेते हैं कि साधारण से दिखने वाले आलू की दुनिया में 5000 से ज्यादा किस्म पाई जाती हैं। रंग भी अलग अलग हैं, सफेद, पीला, लाल, बैंगनी और पेरू आलू का घर है, क्योंकि 8000 साल पहले वहीं सबसे पहले उगाया गया था। 6वीं सदी में स्पेन के लोग आलू को यूरोप लाए।

0: और फिर वहीं से वह पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में 17वीं सदी में पुर्तगालियों के साथ आया और आज आलू के बिना चाट का हर ठेला सूना लगता है। आज ग्रामीण भारत में आलू किसानों की मेहनत और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आलू स्वयं सरल है, सादा है, लेकिन हर चीज के साथ मिलकर उसे बेहतर बनाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि जीवन में मिलजुल कर रहने से ही खुशियाँ बढ़ती हैं। यही जादू है आलू में, ये हमें एक मेज पर एक साथ बैठा देता है। आजकल भागदौड़ की जिंदगी में परिवार के पास वक्त ही कहाँ है। सबकी थालियाँ अलग, सबका कमरा अलग, सबके मोबाइल अलग, और जब माँ कहती है कि आज मैंने दम आलू और पूड़ी बनाई है तो सभी लोग अपने अपने कामों को छोड़कर सीधे डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि आलू हमें जीवन का बड़ा दर्शन सिखाता है। जैसा देश वैसा भेष, जिस परिस्थिति में जाओ खुद को वैसे ही ढाल लो, इसमें कोई अहंकार नहीं है। तभी तो ना कोई घमंड ना कोई दिखावा, हर दिल में बस जाए उसका स्वभाव, क्योंकि सुविधा स्वाद और संस्कार की पहचान, हर भारतीय घर के खाने की स्वादिष्ट जान।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे साधना गुप्ता से वार्ता। सुविधा स्वाद और संस्कार का संगम है आलू। आइए अब सुनते हैं लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रूपये की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन

0: की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: अभी आप सुन रहे थे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्ष की परंपरा के अवसर पर आकाशवाणी आगरा द्वारा आयोजित सुगम संगीत संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वीकार कीजिए मेरा नी श्री कृष्ण का, मेरी साथी उद्घोष का, हरप्रीत कौर के साथ आत्मीय अभिवादन।
1: नमस्कार आदरणीय महानुभावों, संगीत के रसिकों और सुर साधकों, आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष में आयोजित इस सुगम संगीत संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आवाज भी बस एक राज है, हर नगमे में एक दुआ, चलो इस राह पर हम सुरों से करें मुलाकात।
0: बिल्कुल, सुरों से मुलाकात होगी। आप सब आकाशवाणी परिवार का महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि चाहे कंटेंट क्रिएशन हो या श्रोता के रूप में, आपके बिना हम अधूरे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की। जैसा आपको विदित है, हमारी परंपरा है, हम किसी भी आयोजन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं, माँ सरस्वती का आराधन, और इस प्रार्थना के साथ कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, अज्ञान से ज्ञान की ओर गमन करें। तो मैं बड़े विनम्रता के साथ अनुरोध करता हूँ हमारे आकाशवाणी परिवार के मुखिया, जिनके नेतृत्व में आकाशवाणी आगरा निरंतर नित नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रहा है, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी, क्लस्टर प्रमुख क्षेत्रीय चैनल मैनेजर श्री मयंक कुमार जी, कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल सिंह जी, हमारे इंजीनियर राजेश वाजपेयी जी, सहायक अभियंता डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण, कार्यक्रम अधिकारी मोहित कुमार जी, संगीत के जो प्रमुख हस्ताक्षर, आप सबसे विनम्र अनुरोध, कृपया दीप प्रज्वलन करने का कष्ट करें। आइए आप सबसे अनुरोध, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान करेंगे।

धन्यवाद, आप स्थान ग्रहण करें। यह वो गीत था जिसने एक लंबे समय तक प्रत्येक भारतवासी के मन में चेतना जागृत की और राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा पैदा किया जो आज तक कायम है और युगों युगों तक यूं ही कायम रहेगा। हमारी परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका अपने दिल की गहराइयों से आने पर खुशी व्यक्त करते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं आकाशवाणी आगरा के सहायक निदेशक कार्यक्रम श्री अनेंद्र सिंह जी को कि वे कृपया आएं और अपने तमाम अतिथियों का वाचिक परंपरा से स्वागत करने का कष्ट करें। श्री अनेंद्र सिंह।

0: सभी उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित कलाकारों, साहित्य एवं संगीत प्रेमियों, मीडिया जगत से जुड़े साथियों और प्रिय श्रोताओं, आप सभी का आकाशवाणी आगरा परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह अवसर केवल एक संगीत संध्या भर नहीं बल्कि भारतीय लोक प्रसारण की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्षों का उत्सव एक भावपूर्ण पड़ाव है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जिसने पिछले 90 वर्षों में भारत की आवाज़ को संजोया, साझा किया और संपूर्ण देश की एकता को एक सूत्र में बांधा। एक ऐसे मंच का जिसने आवाज़ को पहचान दी, विचारों को पंख दिए और भावनाओं को घर घर तक पहुंचाया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को अपना ध्येय बनाकर ये माध्यम एक राष्ट्रीय आवाज़ बना जिसने भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म इन सब से परे रहकर देश को जोड़ने का कार्य किया। और इसी महान परंपरा का एक महत्वपूर्ण अध्याय ये है आकाशवाणी आगरा। 16 जनवरी सन 1989 को स्थापित इस केंद्र ने पिछले लगभग 37 सालों में ब्रजभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन को निभाया है। और सुलह कुल की इस नगरी आगरा से लोक प्रसारण का यह केंद्र केवल ध्वनि तरंगों का माध्यम भर नहीं रहा बल्कि विगत लगभग 4 दशकों से यहाँ की लोक परंपराओं, साहित्यिक चेतना, संगीत साधना और जन भावनाओं का जीवंत दस्तावेज बना हुआ है। हमारा यह केंद्र ब्रज संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भी निरंतर सक्रिय रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है कि आकाशवाणी ने हमेशा ही नई प्रतिभाओं को अवसर देने और उन्हें सशक्त मंच प्रदान करने का कार्य किया है। अनेकों स्थानीय गायकों, कवियों, लोक कलाकार और रंगकर्मी कलाकारों ने आकाशवाणी से साथ में जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। आज कुछ ऐसी महान विभूतियों को जिन्होंने आकाशवाणी की 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के ऐतिहासिक सफर में उसके हमसफर बनते हुए बीते 3 से 4 दशक अनवरत रूप से आकाशवाणी आगरा के साथ जुड़कर क्षेत्र के लोगों की सेवा की है और अब 75 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, ऐसे अनमोल और अनुभवी रत्नों को आज इस गौरवमयी अवसर पर इस कार्यक्रम में यहाँ आमंत्रित करके आकाशवाणी आगरा केंद्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी से जुड़े सभी वर्तमान एवं पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों, उद्घोषकों और प्रस्तोताओं तथा उन समस्त देखे अनदेखे हाथों को भी हृदय से नमन करना चाहता हूं जिनके समर्पण ने आकाशवाणी को सिर्फ 90 वर्षों पुराना ही नहीं बल्कि 90 वर्षों का युवा अनुभव बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण उन कलाकारों का, उन साहित्यकारों और सुधी श्रोताओं का जिन्होंने आकाशवाणी को जिंदा रखा है और जिनके कारण ये सिर्फ प्रसारण संस्था भर नहीं बल्कि पूरे भारत देश की धड़कन बन सका। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आज की सुगम संगीत संध्या की सफल और यादगार आयोजन की मंगल कामना के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, कोटिशा वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल सिंह जी। जिधर नजर जाती है वहाँ पर व्यक्त नहीं व्यक्तित्व विराजमान है, अपने आप में संस्था है, चाहे संगीत हो, कला हो, चाहे वो शायर हो, चाहे गीतकार हो या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, जो भी हैं अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं।
2: वर्ष 1923, एक छोटी सी ट्रांसमीटर से भारत में रेडियो के सफर की शुरुआत हुई। जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने भारत में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया। इस तरह ये छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव का हिस्सा बन गई। भारतीय प्रसारण के इतिहास में 8 जून 1936 का वो दिन एक ऐतिहासिक पल के रूप में दर्ज हुआ जब एक नई पहचान के साथ रेडियो की आवाज पूरे देश में गूंजने लगी। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का आधिकारिक रूप से नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। समय के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो देश का राष्ट्रीय प्रसारक और एक विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में अब स्थापित हो चुका था। तो आकाशवाणी केवल सूचना और समाचारों तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि भारतीय कला, संगीत और संस्कृति का एक विशाल मंच बन चुका था।
1: आकाशवाणी आज देश की लगभग 100% जनसंख्या तक अपने कार्यक्रम पहुंचा रहा है। पहले बड़े रेडियो सेट चला करते थे लेकिन तकनीक के साथ

आकाशवाणी ने अपने आप को अपग्रेड किया और आज ऐप के माध्यम से न्यूज़ ऑन AIR या सोशल मीडिया या यूट्यूब पर आप पूरी दुनिया में आकाशवाणी कार्यक्रम सुन सकते हैं। आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड साबित होता है कि कैसे रेडियो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है। आज आकाशवाणी आगरा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ ऐसे रचनाकार हैं, ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपनी कला से रेडियो को समृद्ध किया है। आज अवसर है उन्हें सम्मानित करने का। और जो ऐसे कलाकार, रचनाकार, साहित्यकार, विद्वत समाज जो 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उनका आज हम अपने दिल से नमन होकर उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और उन्हें सम्मानित कर हम अपने आप को सम्मानित करना चाहते हैं। तो अपने तमाम जो हमारे वरिष्ठ कलाकार, साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं एक बार उनका नाम पढ़ रहा हूँ। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप यहाँ पर आएंगे और हमारे अधिकारीगण आपका सम्मान करना चाहेंगे। बड़े आदर के साथ मैं नाम ले रहा हूँ। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर उषा यादव जी, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत आगरा कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर शशि तिवारी जी, कवि व साहित्यकार आदरणीय श्री राजेंद्र मिलन जी, आदरणीय श्री अरुण डंग साहब, उर्दू शायर और साहित्यकार जनाब वसीम बेग दिल ताज महली, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त कवि प्रोफेसर सोम ठाकुर जी, हवेली संगीत के मर्मज्ञ डॉक्टर सत्यभान शर्मा जी, सुप्रसिद्ध कवित्री आदरणीय डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी जी, लोकगीत के विद्वान डॉक्टर नरपत देव भारद्वाज जी, सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय शैल अग्रवाल जी, उर्दू शायर जनाब शाहिद नदीम साहब, लोकगीत के जाने माने कलाकार श्री अशोक कुमार मथुरिया जी, वरिष्ठ कवि श्री रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, लोकगीत की एक और वरिष्ठ कलाकार श्रीमती उमा देवी गौतम, सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राम सनेही लाल शर्मा जी, अलीगढ़ के एक और सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ जी, आगरा की हमारी सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती रमा रानी वर्मा श्याम जी, लोकगीत की एक और कलाकार कृष्णा कुमारी माथुर जी, और आगरा साहित्य में एक और नाम बड़े आदर से लिया जाता है, श्रीमती शैलबाला अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ कवि हैं श्री शलभ भारती जी, लोकगीत और नौटंकी के कलाकार रचनाकार डॉक्टर ब्रज बिहारी लाल वर्मा बिरजू, सुगम संगीत में जिनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और वो नेत्र सर्जन है आदरणीय डॉक्टर HP सिंह साहब, अलीगढ़ से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गिरिराज किशोर जी, और साहित्यकार संस्कृति धर्मी श्री अरुण कुमार डंग जी। आप सभी से विनम्र अनुरोध, कृपया यहाँ मंच के आगे पधारने का कष्ट करें जिससे हम आपका सम्मान कर सकें। और अब क्रम है सुगम संगीत संध्या के मंची कार्यक्रमों का। सबसे पहले ग्वालियर घराने की उभरती हुई प्रतिनिधि कलाकार जिन्हें शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत में गीत, भजन और गजल गायकी में समान अधिकार प्राप्त है, सुश्री शुभ्रा तलेगांवकर। आपके साथ संगत कलाकार हैं ऑक्टोपेड पर भीम शिरोमणि, तबले पर श्री मिथिलेश कुमार, सितार पर श्री भंवर सिंह खींची, हारमोनियम पर पंडित रविंद्र तलेगांवकर, ऑर्गन पर श्री मनीष शर्मा, स्पेनिश गिटार पर श्री रमेश चंद्र।

आज की इस मखमली शाम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ श्री सुधीर नारायण जी। सुधीर जी की गजलें न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर बड़े अदब से सुनी जाती हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजे गए और बेगम अख्तर अवार्ड से सम्मानित किए गए सुधीर जी का आकाशवाणी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है।

उस्ताद सौंप ने एक शेर कहा था जो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे इब्राहिम सौंप, उन्होंने शेर कहा था, लाई हयात, हयात यानी कि जिंदगी, लाई हयात आए कजा यानी कि मौत, लाई हयात तो आ गए और कजा ले चली चले। लुक एट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइक जिंदगी मौत, लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक बार पुनः जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। और आइए चलते हैं आज की इस सुरमई संध्या के अगले चरण में, जहां पर सूफियाना कलाम आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं बड़े अदब के साथ सुप्रसिद्ध कव्वाल जनाब सलीम हसन चिश्ती और साथी। जोरदार तालियों के साथ जनाब सलीम हसन चिश्ती जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत है आपका।
2: आपके साथ संगत कलाकार जो प्रस्तुति देंगे, ऑर्गन पर प्रस्तुति देंगे मनीष शर्मा और फरमान खान ढोलक पर और तबले पर। साथ ही हम नूरुद्दीन जी को आमंत्रित करते हैं

तवज्जो चाहूंगा आप सभी हजरात से, नैना मिलाएंगे ये तो मैं बाद में कह दूंगा, सुना दूंगा आपको, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जो कुछ बताया टूटा फूटा सा, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।

कुछ पसंद आ रहा है आपको कुछ? थैंक यू। अब मैं आपकी खिदमत में नजर करता हूँ। एरी सखी मोरे पिया घर आई।

ये संगीत जोड़ने का काम करता है, प्यार मांगता है, मोहब्बत मांगता है। इसमें अगर जो भी कुछ अगर दुनिया में किसी ने सीखा है, चाहे वो कोई भी शहर, वो संगीत उसका एक माध्यम है। दुनिया में हम तो इंसान हैं, जानवरों पर भी इसका असर होता है, तो बगैर इसके संगीत

0: साथियों आनंद आ रहा है ना? अगर आनंद आ रहा है सच में तो अगर जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए इन कलाकारों के सम्मान के लिए।
1: थैंक यू
0: क्योंकि कलाकारों की असली दाद आपकी तालियां ही हैं। एक और सुन लिया जाए, क्या आप लोगों की राय है? एक और सुन लिया जाए, चलिए।
1: थैंक यू
0: आप सबकी इजाजत है, आदेश है।
1: बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, दमादम मस्त कलंदर।

0: वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, खासकर तब जब महफिल इतनी हसीन हो। आज की ये शाम, ये भजन, ये गीत, ये गजल, ये कव्वालियां और आप सबका साथ हमेशा हम सबके दिलों में महफूज रहेगा। अब हमारे कलाकार, इनका हम सम्मान करें स्मृति चिन्ह और इस पूरी व्यवस्था सेंट जॉर्जेस कॉलेज की तरफ से जो हमें प्राप्त हुई है, उनका सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके आदरणीय प्रधानाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय श्री अक्षय जरमाया जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया मंच पर आए, उनका भी हम सम्मान करना चाहते हैं। आदरणीय उप महानिदेशक महोदय से अनुरोध है, कृपया वे मंच पर आए। हमारे कार्यक्रम प्रमुख अनिंद्र सिंह जी से अनुरोध, कृपया हमारे आज के कलाकार जनाब सलीम हसन चिश्ती जी का, उन्हें हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और आज के प्राचार्य जी हमारे जो सेंट जॉर्जेस कॉलेज के हैं, उनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। जनाब सलीम हसन चिश्ती को एक स्मृति चिन्ह आदरणीय प्रधानाचार्य जी प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। अब बारी है हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य हमारे सहयोगी सेंट जॉर्ज कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय अक्षय जरमाया जी को उन्हें सम्मानित करने का। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके सहयोग से इतना सुंदर आयोजन यहाँ संभव हो पाया। आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष के उपलक्ष्य में ये आयोजित सुगम संगीत संध्या, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे आज के सभी फनकारों का जिन्होंने अपनी कला से इस शाम को अमर बना दिया। शुक्रिया आप तमाम कद्रदान श्रोताओं का जिनके बिना ये महफिल अधूरी थी। और अब औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ उप महानिदेशक अभियांत्रिकी महोदय से, श्री मयंक कुमार जी से, कि वे कृपया आए और अपने तमाम कलाकारों और सभी के प्रति, उपस्थित अतिथियों के प्रति औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करने कष्ट करें। आदरणीय श्री मयंक कुमार जी।
1: कार्यक्रम को सर देने वाले सभी सम्मानित कलाकार, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ आकाशवाणी के कलाकार, श्रोतागण, दर्शक, सभी आकाशवाणी के अधिकारी, कर्मचारी और मेरे सहकर्मी साथी, नमस्कार। आज की शानदार सुगम संगीत संध्या में पधारे हुए समस्त सम्मानित आगंतुकों के प्रति आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापित करता हूँ। आशा है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी आगरा द्वारा आपकी सेवा में आयोजित इस संगीत संध्या का आप सबने लुफ्त उठाया होगा। 90 वर्ष की यात्रा में आकाशवाणी ने अनेक सुनहरे मुकाम हासिल किए। शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने और उसे प्रोत्साहन करने में आकाशवाणी की भूमिका अप्रत्याशित रही है। कभी ऐसा भी दौर था जब आकाशवाणी में फिल्म संगीत का प्रसारण नहीं होता था, परंतु जब एक विविध भारती और अन्य केंद्रों से इसकी शुरुआत हुई तो फिर ये इतिहास में दर्ज कहानी है। इन्हीं सुनहरे 90 वर्ष की यात्रा आयोजित करने के हमारे महानिदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में हमने आज ये सुगम सजीव संगीत संध्या आयोजन की है। सबसे पहले मैं सेंट जॉर्जेस कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अक्षय जरमाया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये शानदार ऑडिटोरियम उपलब्ध कराया, इस संगीत संध्या को साकार होने में मदद की। मैं कॉलेज के समस्त स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। आज की इस संगीत संध्या के मुख्य आकर्षण हमारे तीन कलाकार सुश्री शुभ्रा तालेगांवकर, सुधीर नारायण जी का तथा जनाब सलीम हसन चिश्ती साहब की रूहानी सुकून देने वाली प्रस्तुति हम लोगों ने सुनी। सभी कलाकारों और इनके साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई। आज इस कार्यक्रम के आयोजित करने में मेरे अपने आकाशवाणी आगरा के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अद्वितीय रही है। सबने विगत 15 दिन के निरंतर मेहनत कर इस कार्यक्रम को

0: माहौल बनाया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं आकाशवाणी आगरा की 1989 में आरंभ से लेकर आज तक इस केंद्र से जुड़े कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों, अभियंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे कलाकारों को ऊंचाइयाँ प्रदान की। आज हम वरिष्ठ कलाकारों और साहित्यकारों का सम्मान किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की सूचना दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में प्रेस एवं मीडिया की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। हम समस्त प्रेस और मीडिया के समस्त प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही दूरदर्शन से आए हुए हमारे जो साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं सफल संचालन करने वाले हमारे श्री श्री कृष्ण जी और इनके जो मैडम इनके साथ थी अर्पित कौर मैडम, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने बहुत सफल संचालन किया। अंत में सभी आगंतुकों का एक बार फिर से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए और इस सुगम संगीत संध्या का आनंद उठाया। आपका ऐसा ही सहयोग हमें भविष्य में मिलता रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: मैं बस एक लाइन बोलूंगा चलते चलते, बशीर बद्र साहब का शेर है कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शब खैर, शुभ रात्रि।
2: जब मन सुर साधना में रम जाता है तो समय का पता ही नहीं चलता। आप सभी का आभार जिन्होंने इस महफिल को इतना करीबा में बनाया। सुगम संगीत का ये नाद आप सभी के जीवन में भी गूंजता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी आगरा द्वारा सेंट जॉर्जेस कॉलेज बालूगंज आगरा के प्रेक्षागृह में 24 मई 2026 को आयोजित सुगम संगीत संध्या के संपादित अंश। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में

0: ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर चार विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक

0: द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले 2 दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5वें ओवर में 1 विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 21, 21, 17, 13, 21 in the semi-final today. In women's cricket, hosts England have set a target of 169 runs for India in the second T20 international of the three-match series in Bristol. In reply, India was 70 for 2 in 9 overs when reports last came in. Opting to bat first, England posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. Priya Kemp was the highest run scorer with 39 not out of just 13 deliveries. For India, Sri Charani took 3 wickets. Indian team is currently leading the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. Indian wrestlers delivered an impressive performance at the Asian Under-17 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam today, securing several medals across different weight categories. In the 73-kilogram category, Garima claimed the gold medal, defeating Mongolia's Namun Tsetseg Batbold 18-6. In the 43-kilogram category, Deeksha secured gold, beating Uzbekistan's Muklisa Masharipova 6-0. In the 49-kilogram category, Nikita settled for silver after a loss against China's Yuting Yuan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. D. Keshavakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डी के शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी

0: के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीरालय के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डी के शिव कुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डी के शिव कुमार को वजीरालय की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया कि डी के शिव कुमार और उनकी काबीना के साथियों की हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पीर के रोज से मुल्क भर में खेत बचाओ अभियान का आगाज होगा और ये 30 जून तक जारी रहेगा। इस मुहिम में शामिल सभी इदारों के हम राब्ताकार के तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र को मुकर्रर किया गया है। 1600 ज्यादा टीमें तश्कील दी गई और खाद के ज्यादा इस्तेमाल वाले 100 अजला के लिए कुल 500 टीमें बनाई गई हैं। मुहिम के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को बरवक्त और सही रहनुमाई फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ज़राअत की वजारत ने जोर देकर कहा है कि कीमियावी खाद के बेतहाशा इस्तेमाल को कम करना इस मुहिम का असल मकसद है। किसानों को खाद के मुतवादिन इस्तेमाल और मिट्टी की जांच की बुनियाद पर दीगर ज़रई सामान को इस्तेमाल में लाने, माहौल के लिए साजगार खाद, नामियाती और हयातियाती अशिया के इस्तेमाल को फरोग देने के सिलसिले में मालूमात फराहम की जाएगी। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DT न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। अमली अवामी शिकायत और पेंशन महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में मसनूई जहानत AI पर मबनी CP ग्राम्स वॉयस चैटबोर्ड समाधान दीदी का आगाज किया। इसे भाषिनी के इश्तराक से इंतजामी इस्लाहात और अवामी शिकायत के महकमे ने तैयार किया है। इस चैटबोर्ड के तवसुत से लोग गुफ्तगू के जरिए अवामी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समाधान दीदी को शिकायत के इजाले से मुतालिक सरकार के निजाम को सभी के लिए दस्तयाब कराने की समत एक अहम कदम करार दिया। वजीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि समाधान दीदी सरदस्त सभी 22 शेड्यूल्ड भारतीय जबानों में काम करेगा और इसमें मजीद इलाकाई और मकामी जबानें शामिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: सरकार ने कपास की दरामद को अगले महीने की 1 तारीख से इस साल 31 अक्टूबर तक कस्टम्स ड्यूटी से आर्जी तौर पर मुस्तस्ना कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में टेक्सटाइल्स की वजारत ने कहा है कि कपास के किसानों और कपास से मुतालिक पूरी वैल्यू चेन के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए यह फैसला किया गया है। इसमें कहा गया है कि अब जबकि कपास का सीजन नहीं है तो इस कदम पर अमल दरामद से टेक्सटाइल सनत के लिए कपास की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सकेगा, MSME इदारों की मदद हो सकेगी, लागत को एतदाल पर लाया जा सकेगा और भारतीय टेक्सटाइल्स की मुसाबकत को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। वजारत ने जोर देकर कहा है कि इस इकदाम से किसानों के मफादात का तहफ्फुज होगा और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक और

0: आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया, जो पायदार अहम मादनियात और जदीद साजो सामान तैयार कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि मुख्तलिफ जदीद टेक्नोलॉजीज में लिथियम बैटरियां और मकनातीस कलीदी रोल अदा करते हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नजरिया है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया जाए और इसकी टेक्नोलॉजी को भी अंदरूने मुल्क ही तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस नजरिए से मुताबकत रखते हुए लोहम नामी एक नए स्टार्टअप ने कामयाबी के साथ ये अहम टेक्नोलॉजी तैयार की है।
1: जल्स में बैटरी बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे किसी भी तरह का आज की बड़ी मशीनों में, सब जगह परमानेंट मैग्नेट्स और लिथियम की बैटरीज का उपयोग होता है। इसका प्रोडक्शन भारत में हो और बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। इस विजन के तहत एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमार के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमार के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमार के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमार के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहसीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मजबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मॉनसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर

काफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर एक जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में तीन T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डी के शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर पीर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ज्वालाबारी और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई, और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा?

0: युवा पत्रकार, कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहां तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की, पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को

0: एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
1: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है।

0: कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
0: और अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत

0: तो नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी नहीं, बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सरवाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सब इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग, पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी।
3: हाँ, और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने अभी, तो नहीं आती। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं, क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
0: मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस है, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 डेज का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना, सही में बहुत डाइवर्स है।
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में
2: पढ़ते हैं
1: उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवर थिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है। तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने गोप्रो भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज, मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: या उस तरह की चीजें, यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आप

0: तो यही होने वाला था कि क्या लगता है, फॉलोअर्स और सक्सेस?
1: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है। हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
4: जी धन्यवाद।
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्व रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
3: जी,
4: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से,
4: जी
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें
4: जी,
1: तो
4: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है, आप तो

0: विद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग

द द्रुत कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मानू नाही तुमरी बात. अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधा राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में

एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राज्य

विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्स तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक ले अनुमति दीजिए। जय हिंद।